ये आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 28वीं तिथि, तदनुसार 18 मई सन 2026। सुबह के 5:53 और 13 सेकंड हुए हैं, हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम सुप्रभात 6:05 पर। कार्यक्रम पेश करेंगी रेनू भट्ट। 7:05 पर आप सुनेंगे गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर बबीता रावत के साथ, और 8 होगा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। रेनू भट्ट लेकर आएंगे कार्यक्रम, और आप सुनेंगे 10:05 पर वेस्टर्न म्यूजिक का कार्यक्रम पूजा आनंद के साथ।

श्रोता सुनेंगे 11:05 पर बॉलीवुड ट्रेल्स, कंचन कानन आपके साथ होंगे और 12:05 पर आप सुनेंगे वेस्टर्न म्यूजिक और 1:05 पर कार्यक्रम होगा रेनबो हेल्पलाइन। शालिनी खंडेलवाल आपके लिए लाएंगी आशियाना कार्यक्रम 2:00।

0: श्रोता सुनेंगे रेडियो डॉक्टर 3 बजे हीना मौज के साथ, और 5:05 पर कार्यक्रम होगा सिटी लाइट। मैसेज मसाला मिक्स आप सुनेंगे 6:05 पर प्रवीण शर्मा के साथ, और वेस्टर्न म्यूजिक कार्यक्रम होगा 7:05 पर, पेशकश मनन ठकराल की रहेगी। और 9 बजे आप सुनेंगे आपकी याद आती रही प्रियंका त्रिपाठी के साथ ये कार्यक्रम। इसके बाद साथी सुनेंगे 10:05 पर वेस्टर्न म्यूजिक, और 11 बजे आपका पसंदीदा कार्यक्रम होगा रंगे महफिल।
1: Good morning, this is Akashvani Kohima, FM Dragoban at 103 MHz. Today is Monday, the 18th of May 2026. The time by the studio clock is 6 and we now begin our first transmission.

गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी कोहिमा, द मॉर्निंग न्यूज रेड बाय नॉबिन प्रधान। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हेल्ड टॉक्स विद हिज स्वीडिश काउंटरपार्ट अल्फ क्रिस्टेसन इन गोथेनबर्ग लास्ट नाइट। मिस्टर मोदी अराइव्ड इन गोथेनबर्ग यस्टरडे ऑन ए टू डे विजिट टू स्वीडन। पीएम मोदी वॉज अवार्डेड स्वीडन्स हाईएस्ट ऑनर, द रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस, इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशंस टू बायलैटरल टाइज एंड हिज विजनरी लीडरशिप। The award is the highest distinction that can be given to a head of government. This is Prime Minister Modi's 31st international honor. During the delegation-level talks, the two leaders reviewed the full spectrum of India-Sweden relations and agreed to elevate the bilateral relationship to a strategic partnership, marking a major milestone in the relationship. They discussed ways to deepen cooperation in trade and investment, technology and innovation, green transition, space, emerging technologies, defense and security, SMEs, research and people-to-people ties. The two leaders agreed

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा, सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों नेता भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी की भावना और हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अनुरूप जनहित के नए अवसरों की पहचान करने पर भी सहमत हुए। उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय संगठनों में सुधार की तात्कालिकता पर जोर दिया गया और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग आगे बढ़ाने पर सहमति बनी।
1: यात्रा के दौरान दोनों देशों ने वर्ष 2026 से 2030 तक के संयुक्त कार्य योजना अपनाई, जिसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक आदान प्रदान को दोगुना करना है। इंडिया स्वीडन स्ट्रॉन्गर टुगेदर टुवर्ड्स 2047 थीम के तहत दोनों देशों ने 2027 में भारत में द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर सहमति जताई। स्वीडन उद्योगपति और प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया और मेड विद स्वीडन पहल के तहत निवेश बढ़ाने का आह्वान किया, विशेषकर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और क्रिटिकल मिशन मिनरल मिशन जैसे क्षेत्रों में। दोनों देशों की साझेदारी अब सेमीकंडक्टर और मजबूत सप्लाई चेन जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों पर विस्तारित होगी। तकनीकी और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भी यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। प्रधानमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए स्वीडन का विशेष आभार भी व्यक्त किया।
2: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
1: इस यात्रा में साझा बौद्धिक विरासत और व्यापक क्षेत्रीय सहयोग को भी नहीं पहचान दी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के 4थे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं।
3: प्रधानमंत्री मोदी सम्राट हेराल्ड पंचम और महारानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यह यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 3रा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। इस सम्मेलन में श्री मोदी के साथ नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन 18 से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन 165 से अधिक देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों, गणमान्य जनों और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को एक मंच पर लाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर आज सुबह 10 बजे तिरुवनंतपुरम में आयोजित समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल शाम शपथ ग्रहण समारोह से पहले 21 सदस्यीय UDF मंत्रिमंडल की घोषणा की।
5: कांग्रेस के नेतृत्व वाली UDF सरकार आज केरलम में 10 साल के अंतराल के बाद शपथ ले रही है। मुख्यमंत्री और 20 अन्य मंत्री तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित समारोह में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को देखने के लिए UDF कार्यकर्ता कल दोपहर से ही बड़ी संख्या में राजधानी पहुंच रहे हैं। इस समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, केरलम के निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर सहित कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल में नवनियुक्त और पदोन्नत मंत्रियों को विभाग आवंटित कर दिए हैं। 10 मई को हुए उत्तर प्रदेश सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों का आवंटन किया गया है। इस फेरबदल में 2 कैबिनेट मंत्रियों और 4 राज्य मंत्रियों को सरकार में शामिल किया गया, जबकि 2 राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के पद पर पदोन्नत किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर कल शाम रायपुर पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह रायपुर और बस्तर में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
6: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह रायपुर में आपातकालीन सेवा डायल 112 के तहत नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद वे बस्तर जाएंगे और जिले के नेतानार गांव में जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। इस केंद्र से दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों को शासकीय और डिजिटल सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी। इसके बाद श्री शाह जगदलपुर पहुंचकर अमर वाटिका में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शाम को वे बस्तर के संग लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के नक्सल मुक्त होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री का यह राज्य का पहला दौरा है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दक्षिण पूर्व अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अंडमान सागर में अगले 2 से 3 दिन तक मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं।
7: मौसम विभाग ने अनुमान व्यक्त किया है कि आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश हो सकती है। वहीं विभाग ने आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में भीषण लू चलने की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ के कुछ इलाकों में भी लू चल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना के पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल VA वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे नंबर हैं 0112331 0481 और 0112371 71। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नीट यूजी प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच अब महाराष्ट्र के लातूर से नांदेड़ तक पहुंच गई है। एक अभिभावक पर अपनी बेटी के लिए प्रश्न पत्र 5 लाख रुपए में खरीदने का आरोप है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने कल उस व्यक्ति से पूछताछ कर जांच के लिए पुणे कार्यालय में बुलाया है। इस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने पुणे की आरोपी मनीषा मंधारे को 14 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। एजेंसी के अनुसार मंधारे नीट जीव विज्ञान परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में मुख्य षड्यंत्रकारी हैं। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। मध्य प्रदेश के लूणी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी के एक यात्री डिब्बे, सामान रखने वाले डिब्बे और जनरेटर वाले डिब्बे में आग लग गई थी। समिति घटना के कारणों, तकनीकी पहलुओं और सुरक्षा मानकों की विस्तृत जांच करेगी, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।

0: चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। प्रतियोगिता में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने एचडी देवेगौड़ा को सही मायने में धरती का सपूत बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद विशाल। भारत और नीदरलैंड्स का द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने का निर्णय आज के सभी अखबारों की पहली खबर है। अमर उजाला की सुर्खी है, रक्षा, खनिज और AI में मिलकर काम करेंगे भारत नीदरलैंड्स, 17 समझौते हुए, 5 साल का रोड मैप तैयार। होर्मुज जलमार्ग में जहाजों पर हमले और आवागमन को रोकना मंजूर नहीं, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि का बयान जनसत्ता में है। सुरक्षित आवागमन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून का पूरी तरह से सम्मान किया जाना चाहिए। भारत को मिलने लगा निर्यात विविधता का लाभ, नए बाजार तलाशने की कवायद का दिखा नतीजा, अप्रैल में भी निर्यात 13% बढ़ा। दैनिक जागरण के अनुसार वैश्विक व्यापार में रुकावटों के बावजूद एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमरीका को निर्यात में हुई मजबूत वृद्धि। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं के नतीजों पर छात्रों के विरोध के बाद बोर्ड के पुनर्मूल्यांकन फीस में बड़ी कटौती के फैसले को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता दी है। बोर्ड ने कहा, दोबारा कॉपी जंचवाने में एक नंबर भी बढ़ा तो पूरी फीस लौटाई जाएगी। एनडीए सरकारों पर लोगों का भरोसा, गृहमंत्री का यह बयान हिंदुस्तान में है। गुजरात के दौरे पर गए गृहमंत्री ने हाल के विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत पर कहा, भाजपा और एनडीए की सरकारें आज देश के 80% भूभाग पर शासन कर रही हैं। दिल्ली में महिलाओं को मिलेगा 10 करोड़ का कर्ज, नहीं देनी होगी कोई गारंटी। पंजाब केसरी के अनुसार दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप और स्वयं सहायता समूहों को बिना गारंटी देगी ऋण। तीसरे और चौथे बच्चे के जन्म पर परिवारों को आर्थिक प्रोत्साहन देने की आंध्र प्रदेश सरकार की घोषणा पर नवभारत टाइम्स संपादकीय में लिखा है, ऐसे प्रयोग दूसरी जगहों पर भी हुए लेकिन खास सफल नहीं रहे। दक्षिण भारत के राज्यों ने बहुत मेहनत से जनसंख्या नीति लागू की थी, शिक्षा और जागरूकता पर बाकी राज्यों के मुकाबले अधिक खर्च किया गया, यही कारण है कि आज दक्षिण के राज्य आगे खड़े दिखते हैं। पत्र लिखता है, आबादी को बढ़ाने की नाकाम कोशिशों के बजाय मौजूदा कार्य बल के बेहतर इस्तेमाल पर ध्यान देने होंगे।
0: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पहुंचने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds bilateral talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg. India and Sweden decide to elevate their bilateral ties to strategic partnership. Prime Minister Modi invites Swedish companies to enhance their presence in India under Make in India, National Green Hydrogen Mission and National Critical Mineral Mission initiatives. Congress leader V.D. Satheeshan to be sworn in as Chief Minister of Keralam today. Southwest monsoon likely to hit Keralam coast on 26th of this month, 6 days ahead of its normal date. And in IPL cricket, Delhi Capitals beat Rajasthan Royals by 5 wickets in Delhi. And now the news in detail.

जी हाँ दोस्तों, आकाश वाणी को हिमाय फ्रॉम ट्रगबैन पर सुन रहे हैं वेस्टर्न म्यूजिक मेरे साथ। और अगर आपको अपना संदेश हम तक पहुंचाना है तो जल्दी से लिख दीजिए और भेज दीजिए इस नंबर पर 9436805333। एंड वेल यस माय डियर लिसनर्स, इफ यू आर ट्यून इन फ्रॉम जुनहेपतो, यू आर ट्यून इन एट 101.2 मेगाहर्ट्ज़। For our friends from PEC, you are tuned in at 102.1 MHz. From our friends from Wakha, you are tuned in at 101.8 MHz. And our friends from Tanning, Dimapur, Shamator, Mallory, you are all tuned in at 100.1 MHz. Well, our friends from Mon, you are tuned in at 102 MHz and Mukokchung at 100.9 MHz. To jo thakise apunar kan sob laga frequency. Aru, yes, we will go ahead and listen to the next track. This is Becky G with Loving So Hard.

वेल माय डियर लिसनर्स, हमारे एफएम परिवार, एफएम ट्रकोबन का दीवाना दुर्गेश नागिनपुरे और परिवार का मैसेज आ चुका है. वेल दुर्गेश जी, आपका फिर से हमारे घर पर स्वागत है. ये तो आपका ही चैनल है, राइट? दुर्गेश जी, बहुत बहुत अच्छा लगता है जब आप हमेशा हमें गुड मॉर्निंग बोलते हो. लगता है ना, घर में एक बड़ा है और वो हमेशा हमारा ख्याल रखता है. ऐसा वाला आप एफएम का ख्याल रखते हो. तो यस, गुड मॉर्निंग टू यू टू. और यहाँ पे सपत श्रृंगी रेडियो लिसनर्स ग्रुप जुड़ चुके हैं. और जी हाँ दुर्गेश जी, हमें आपका शायरी का इंतज़ार है. ऑलराइट, एंड यस, विद दैट सेड, यू नो, लेट्स बिकम अ लिटिल बोल्ड टुडे. यू नो, यू एक्चुअली बिकम मीनर when you heal, because you tolerate less, your boundaries are stronger, and you do not care for validation. So that's like the people pleasing personality of yours should be out of the window today. All right, so yeah, don't please anybody. It's okay if you want to say no, say it out loud. Bina jhijak ke bolo, no, I don't want to do that, that is not me. Do not always be, you know, people pleasing. All right, and yes, coming up, this is Nickelback, Far Away.

Well, listeners, kena ko yate message aiki na se to likhi na pata se hello there RJ, a very good morning to all the lovely RJ out there, and song are rocking, nice playlist. They RJ by have a joyful day with the love of our Almighty Father God Kuina. God bless you, Daniel Momine likhi na pata se. Well, thank you so much, Daniel likhi na pata idea karne. Yate ko likhi na pata se kuch rishte upar wala बनाता है, कुछ रिश्ते लोग बनाता है, पर वो लोग बहुत खास होता है जो बिना रिश्ते की कोई रिश्ता निभाता है। कोई ना लिखी से हाय आरजे जेकब, मैं भी ऐसी रिश्ते में फंस गया लेकिन अच्छा लग रहा हूँ। एनीवे आई एम एंजॉइंग योर शो, थैंक यू फॉर प्लेइंग ब्यूटीफुल सॉन्ग्स फ्रॉम लोनी कोहिमा। वेल थैंक यू सो मच लोनी, मुझे कुछ पता नहीं कि कौन से रिश्ते में आप फंस गया मैं, बट एनीवे थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग। अनदर मैसेज लिखिया से दुर्गेश नगनपुरी, राधेश्याम नगनपुरी, वंदना भावना बिंदु, गोले कुसुम भाई, बाबू दिव्यांश और सुरेश कुमार दक्षे, और ये सुरेश वर्मा, ऋषभ कनक, भावना वर्मा, प्रेमलाल वर्मा, निकेश धर्मेंद्र और ममता बाई वर्मा, तेखन भी गुड मॉर्निंग अर्जे नमस्कार गुना लिखिया से। वेल थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर द मैसेज, आप लोग का संदेश के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नेक्स्ट गाना को होने वो आप लोगों के लगा अवस्थे से फिल्म से जलेबी, और यू गीत लिखा हुआ से अराफत महमूद और म्यूजिक दिया हुआ से तनिक्स बख्शी।

0: FM 드래곤 밴 뉴스 뮤직 엔터테인먼트 FM 103 메가헤르츠
1: इटू आकाशवाणी कोहिमा एफएम ट्रैगोबैन 103 मेगाहर्ट्ज होमोय 11 बजे हालोगे कोहिमा टाउन लगा ट्रैफिक अपडेट एनेगा अनिडीएसए मोहनकोलापरा लुइकेना पीएचक्यू जंक्शन इटिया नॉर्थ बाउंड ते हेवी ट्रैफिक दिखाई असे किंतु साउथ बाउंड होले लाइट ट्रैफिक माने हल्का ट्रैफिक असे जुदि अपुना दुसरा रास्ता लबो कोले ओल्ड मिनिस्टर्स हिलपरा जेल कॉलोनी रास्ता इतिया पीएचक्यू जंक्शन पर लुई किना मेजर जंक्शन नॉर्थ बाउंड हुए इतिया कारण भारी ट्रैफिक असे आकु साउथ बाउंड हुए हल्का ट्रैफिक असे दूसरा रास्ता हुए परा मेडिकल टी मॉडल परा आईजी नहले बा लेडी स्माइल रोड इतिया टीसी पिकेट पर लुई किना राजू पॉइंटे नॉर्थ और साउथ बाउंड दुईताते भी मॉडरेट ट्रैफिक दिखाई दी असे दूसरा रास्ता हुए बॉक्स कटिंग एनएचके पर सेंसस पॉइंट नहले बा फुलबारी खचेजिए ग्राउंड परा राजू पॉइंट इतिया राजू पॉइंट परा सेंसस पॉइंटे नॉर्थ और साउथ बाउंड भी मॉडरेट ट्रैफिक दिखाई से हाई स्कूल जंक्शन परा सेंसस पॉइंटे इतिया नॉर्थ बाउंडे मॉडरेट ट्रैफिक असे आकु साउथ होइले लाइट ट्रैफिक असे दूसरा रास्ता लोइले बिलीग्राहम रोड डीबीएस नहलेबा हाई स्कूल जंक्शन टू टी मॉडल रोड आरो आखरीते एनएचके जंक्शन परा लुइकिना सेंसस पॉइंट नॉर्थ और साउथ बाउंड दुईताते भी हल्का ट्रैफिक असे एतु थाकिसे इटा होमय 11 बजे लगा ट्रैफिक अपडेट आरो इटा न्यूज हेडलाइंस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनवाइट्स स्वीडिश कंपनीज टू एनहांस देयर प्रेजेंस इन इंडिया अंडर मेक इन इंडिया नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन एंड नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन इनिशिएटिव्स Ministry of External Affairs says business leaders and CEOs who met Prime Minister Narendra Modi in Sweden expressed strong interest in India and appreciated the country's transformation driven by sustained economic reforms over the past several years. Chief Minister Nipu Rio highlights that Nagaland Handloom and Handicraft Development Corporation Limited has been promoting Nagaland's indigenous handloom and handicrafts since 1979 by supporting weavers and artisans through production centers, raw material supports, exhibitions, fairs and sales emporiums. Union Minister for Health and Family Welfare Jagat Prakash Nadda arrives in Switzerland to participate in 79th World Health Assembly. The six-day event will begin today in Geneva. India expresses deep concern at the attack targeting the Baraka nuclear facility in the UAE. A vessel carrying 20,000 metric tons of liquefied petroleum gas arrives at Din Dayal Port Authority in Kandla in Gujarat after crossing the Straits of Hormuz amid the West Asia crisis. Narcotic Controls Bureau achieves

प्रोग्राम ते को दूसरो गीत होने को कुमार शानू और अल का एक निकल का वास्ते फिल्म से बरसात और एक गीत करने लिखी गिना पता से रोमेश पात्रो रूनू पात्रो एंड लक्की गोलागत असम प्र लिखी गिना पता से और तखन एक गाना डेडिकेट कर दिए से अमोल बसुमतरी बैकन मुंडा विमल बसुमतरी देवाशीष हजारिका रुकुविले मेथा शिकारी रोंगफार दुर्गेश नगनपुरी जोगेंद्र रोंगपी सोनाली एंगटीपी हंड्रिका तिमुंगपी अंजलि बसुमतरी एंड ऑल एफएम फ्रेंड्स को लिखी से वेल थैंक यू सो मच लिखी गिना पठाई दिया करने

वेल लिसनर्स कैन हकुयत लिखी न पुथा से गुड मॉर्निंग आरजे जैकब सर नमस्कार. फिल्म का नाम बागी 2016 सॉन्ग सब तेरा. लिसनर्स आसे निमादी बॉय एंड निमादी गर्ल ग्राम जसवाड़ी से कोई ना लिखी आसे. दिस इज मध्य प्रदेश पर आसे ग्राम जसवाड़ी ये तो जगह पर आसे. सो निमादी बॉय और निमादी गर्ल टाइजन है मांगिया गाना इतना बजाय दिबो. अरमन मलिक और श्रद्धा कपूर लगा आवाज थे से फिल्म आसे बागी 2016 लगा से इतु फिल्म. सो हनी गा एंजॉय कर भी एंड यस लिसनर्स कान हम बार बजे हुआ लगे अपनी गान हनिया हम ट्राफिक अपडेट तार पास आपको कंटिन्यू कर पसंद गाना तो.

यता कसले किन पठाइकन जस्तै दुर्गेश नगनपुरी, रदेश्याम नगनपुरी, वन्दना, भावना, बिन्दु, गोलु, कुसुमबाई, बाबु, दिव्यांश, सुरेश कुमार दक्षी, सुरेश वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा, प्रेमलाल वर्मा, निकेश धर्मेन्द्र और ममताबाई वर्मा तैकन गना मैया से जोस फिल्म पर उदित नारायण और अलकैक निकल का वास्ते से तो लिस्नर्स का नीतिया होने की ना एंजॉय करेंगे।

प्रोग्रामते आकु हुनी वो अपने लोग के उदित नारायण और अलके एक निकला का वास्ते फिल्म से कुछ कुछ होता है आरे तो गीत करने लिखी ना पता से वो थुमो मुली नुंगिंग विलेज वो खा परा सो इटु गाना इटे बजा दिया से

0: the scope of bilateral engagement. Union Ports, Shipping and Waterways Minister Sarbananda Sonowal salutes the indomitable spirit of women seafarers on the International Day for Women in Maritime today. 17 years after Sri Lanka brings an end to the conflict with the Liberation Tigers of Tamil Eelam, commemorations are being held across the island to mark the conclusion of the nearly three-decade-long civil conflict. Indian Embassy says an Indian worker was killed and three others injured in a drone attack in the Moscow region. In Uttar Pradesh, at least 9 people killed in a road accident in Lakhimpur Kheri district this morning. WHO WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus declares the Ebola disease outbreak in Congo and neighboring Uganda a public health emergency of international concern after more than 300 suspected cases and 88 deaths. Rupee opens on a weak note and slumped to an all-time low of 96.25 in early trade today as elevated crude oil prices, global uncertainty and a stronger dollar continue to remain key risk for the domestic unit. CNG prices hiked by 1 rupee per kg on Sunday, the second increase in rates in less than a week. CNG now cost 80.9 rupees per kg in the national capital. And India finishes Asian Weightlifting Championships 2026 in Gandhinagar with 10 medals, including 1 silver and 9 bronze, marking a big improvement from previous edition in Jiangsan, where India returned without a medal. That is all we have in this news headlines.
1: मार्केट के बारे में क्या
2: परफॉर्मेंस का बोलो
1: नहीं तो फ्यूचर
2: मार्केट ट्रेंड देख
1: सुनने में आया कि
3: आज की खबर देख पहले ही बोला था ब्रो
2: माय प्रेडिक्शन इज
4: आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन
2: मेरे दोस्त ने बोला
5: देवी जी की सुनो
6: अब अच्छा लग रहा है ना लगेगा ही हमने शोर को म्यूट जो कर दिया है आपको भी अपने कीमती सपनों को सच करना है तो बेमतलब की बातों को म्यूट कर दो और म्यूचुअल फंड्स में डटे रहो म्यूचुअल फंड्स सही है
7: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें
8: फ्राई कुरिया होमय तेल लगा बिशी प्रॉपर्टीज खान बदली हो जाए आरो एके तेल टू बार बार चलाइले टोटल पोलर कंपाउंड्स टीपीसी टू बनाई जाए इटु कंपाउंड्स खान टू काउ कारणे बिया आसे आरो इटु पारा किसिम बीमारी उलाई दे जुंतु खान आसे हाइपरटेंशन एथेरोस्क्लेरोसिस अल्जाइमर्स डिजीज आरो लिवर बीमारी कंज्यूमर्स खान लगा हेल्थ टू बचाई किना राखिबो कारणे एफएसएसएआई पारा टीपीसी लगा लिमिट टू 25% राखी किना आसे आरो इटु लिमिट उपरते वेजिटेबल ऑयल टू ना चलाबो लागे अपुनी लगा हेल्थ टू बचाई किना राखिबोले इटु कदम खान लबी फ्राई कुरिबोले वेजिटेबल ऑयल ही चलाबी पारियाता कुकिंग ऑयल टू एक बार ही चलाबी খালুয়া ফ্রাই কুড়ি কেন বাচিয়া তেল তো ফিল্টার কুড়ি কেন খালি একবার হি চলাবি বাচি কেন থাকা তেল তো দুই দিন ভিতরতে চলাই লবি সবজি তো কমতি টেম্পারেচারতে ফ্রাই কুড়িবি তেল গরম কুড়িয়া সময়তে তেল পাড়া ধুঙা উলাব না দিব লাগে ফ্রাই কুড়িয়া সময়তে খালুয়া টুকরা খান তো কালা নোহা আগেতে বার বার উলাই থাকিবি ফ্রাই কুড়িবলে কারণে ফ্রাইয়ার নহলিবি স্টেইনলেস স্টিল বর্তন হি চলাবি টেস্ট আর গুণ বিয়া না ওলাব কারণে লোহা লাগা কারাই খান হি চলাবি ইটু জানকারি দি আছে স্টেট ফুড সেফটি অথরিটি Department of Health and Family Welfare.
9: Pepesam, HIV and AIDS Act 2017.
10: Pelana aking legay lo. HIV na AIDS Prevention and Control Act 2017 ayde. HIV matay tay na liye ke bam yada gum kwak lukura na tali po bam.
9: Ek ayde matay tay ke bam libe de ma ki cham cham ka. Kerai de ma kam ke pay, laishu ke pay, bumi riale na hema baka ka. Hene hurut teh di kelak zaman sugai bang.
10: Go, anu yang hene hurut kega kita teh gulai.
9: Sam aida Nagaland State AIDS Control Society ne kaila bebam.
11: WFM Dragon Band.
12: 103 MHz.
11: News, music, and entertainment.
12: WFM Dragon Band.
11: FM 103 MHz.
0: Welcome back and good afternoon listeners. It is Akashvani Kohima FM Trakuban 113 MHz per opinion program Hunia se. Aritako continue Kuria wo apni person gana that is SMS request program to continue Kuria se. To yet

को दूसरा गीत हुनिबो कौन है जो सपने में आया फिल्म पर उदित नारायण और अदूर अनुराधा पटवाल लगा वस्ते और तो गीत करने लिखी न पुताई से बाइकोन मुंडा डिस्ट्रिक्ट से चराई दियो सोनारी असम पर और ताई तो गाना डेडिकेट करी दिया से टू ऑल द रेगुलर लिसनर्स को ही ना लिखी न पुताई से सो थैंक यू सो मच लिखी न पुताई दिया करने

वेल अथेकुल लिखिने पठाइसे गुड आफ्टरनून आरजे जेकब सर नमस्कार फिल्म का नाम दिल वाले 1994 का सॉन्ग मौका मिलेगा तो हम लिसनर्स असे श्रीकांत पटेल रुचिका श्रीदीप एंड गोलू पटेल ग्राम लाचोरा से कोई ना लिखी है वेल थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद आप लोगों को लिख के भेज दिए इसलिए जो आपने मांगा वो गाना अभी बजा देगा तो लिसनर्स का नीति

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंच गए हैं। इस दौरे में भारत और नॉर्वे के बीच द्विपक्षीय वार्ता और तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन शामिल है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा।
1: आज प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और 5 नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य $19 अरब है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, आर्कटिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश में सभी कंपनियों के लिए अवसर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्षों से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की सुधार एक्सप्रेस पूरी गति से चल रही है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को द्विपक्षीय संबंधों में उनके असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने यूडीएफ सरकार के नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चेन्नीथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता पी के कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। छत्तीसगढ़ में पहले ये सुविधा 16 जिलों में थी, अब ये 33 जिलों में उपलब्ध है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के बाद गृहमंत्री बस्तर के लिए रवाना हो गए, जहां वे नेतानार गांव में सीआरपीएफ कैंप परिसर में स्थापित जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वियतनाम और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि वे द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तार देने के लिए इन दोनों एशियाई देशों का दौरा करने को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरे का मुख्य उद्देश्य रणनीतिक सैन्य सहयोग, रक्षा औद्योगिक साझेदारी और समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता को प्रोत्साहित करना है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर होने से एक सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। ये हादसा पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। प्रधानमंत्री ने इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर शोक व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 133 अंक की गिरावट के साथ 75,105, निफ्टी 60 अंक लुढ़क कर 23,584 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी।
1: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का एफएम रेनबो चैनल दिल से दिल तक प्रोग्राम रेनबो हेल्पलाइन। मैं आपके साथ कंचन। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी दोस्तों? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने परिवार के साथ जुड़े होंगे एफएम रेनबो के साथ दिल से दिल तक। दोस्तों, हमारी सेहत अच्छी रहे ये कोशिश तो हम सबकी रहती है, लेकिन कभी काम काज, कभी भागा भागी या कभी अपनी आदत के चलते जाने अनजाने हम अपनी नींद से ही समझौता कर लेते हैं और रिजल्ट ये होता है कि नींद से जुड़ी हुई परेशानी और लगातार थकान की समस्या बनी रहती है। तो क्यों ज़रूरी है अच्छी नींद, ताकि थकान हमारी डिक्शनरी में बिल्कुल ना हो, और इसी विषय पर हम बात करेंगे प्रोग्राम रेनबो हेल्पलाइन में। और आज स्टूडियो में हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला, रेजिडेंट डॉक्टर जीटीबी हॉस्पिटल। सर, एफएम रेनबो के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत।
2: थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी, और सारे सामीन को भी मेरा आदाब और नमस्कार।
1: सर, अच्छी नींद की जब बात होती है तो अच्छी नींद आखिर है क्या, कैसे हम इसको परिभाषित करें कि अच्छी नींद क्या है?
2: जी गंजन जी, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अच्छी नींद के हम आमतौर पे पैरामीटर ये सोच लेते हैं कि अगर हम प्रॉपर घंटे नींद ले रहे हैं, यानी कि नींद की क्वांटिटी बराबर ले रहे हैं, तो वो अच्छी नींद हो जाती है जी। लेकिन क्वांटिटी के साथ साथ नींद की क्वालिटी भी उतनी इंपॉर्टेंट है। आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में जहाँ इतने स्ट्रेसेस हैं और हम उससे बचने के लिए अलग अलग तरह के मेडिटेशंस और बाकी एक्सरसाइजेज या इस सब चीज़ या न्यूट्रिशन की तरफ ध्यान देने की कोशिश करते हैं, वहाँ हम शायद स्लीप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। स्लीप शायद सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है, या सबसे बॉडी की बॉडी एज वेल एज माइंड की रिकवरी के लिए
1: जी। तो अगर सर से आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो जुड़ जाइए एफएम रेनबो के साथ। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर आप नींद से जुड़ी कोई भी समस्या, कोई भी जानकारी आप सर से हासिल कर सकते हैं। साथ ही फ़ोन नंबर भी खुले हैं हमारे नंबर से 2342 1084, और दूसरा नंबर है 2342 1080, और दिल्ली के बाहर से अगर कॉल कर रहे हैं तो 011 जरूर मिलाए। प्रोग्राम रेनबो हेल्पलाइन, जुड़े रहिए एफएम रेनबो के साथ दिल से दिल तक।

0: जी साहब, नींद किसी ने भी चुराई हो, लेकिन अच्छी नींद बहुत जरूरी है। सर आज हमारे स्टूडियो में हैं, और हमारे साथ कौन है? हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला, रेजिडेंट डॉक्टर जीटीबी हॉस्पिटल। सर, नींद की जब बात होती है तो अच्छी नींद आखिर क्यों जरूरी है?
1: जी कंचन जी, हमारी बॉडी में नेचर ने, फितरत ने एक सुविधा रखी है रिकवरी की। हम जो पूरे दिन प्रोडक्टिविटी का प्रोडक्टिव काम करते हैं, उसमें हमारा माइंड भी, हमारी बॉडी भी एग्जॉस्ट हो जाती है, थकान हो जाती है। उस थकान से रिकवरी के लिए नेचुरल मैकेनिज्म है, और शायद इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नेचुरल मैकेनिज्म कोई और सा नहीं है नींद के विषय से। क्योंकि जब आप नींद ले रहे होते हैं तो वो सिर्फ एक प्रोडक्टिविटी से रेस्ट नहीं है, बल्कि वो एक एक्टिव रिकवरी का फेज है। बॉडी के जो जो आपने कॉम्पोनेंट्स यूज करे हैं या जो जो एग्जॉस्ट हो चुके हैं, चाहे वो सेलुलर लेवल पे हो, चाहे वो मैक्रो लेवल पे हो, उस सब के अंदर ही नींद के अंदर एक रिकवरी का वो छुपा हुआ है।
0: जी जोया पूछ रही है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से कि जो नींद की कमी है उसके क्या क्या नतीजे हो सकते हैं, घातक नतीजे हो सकते
1: जी
0: हैं?
1: नींद के तो एक्यूट और क्रॉनिक, यानी कि फौरन जाहिर हो जाने वाले और कुछ टाइम में एक्यूमुलेट होने वाले बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी नींद का कौन सा कंपोनेंट लैक कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मिसाल देता हूँ, दो तरह की प्रॉब्लम हो सकती है नींद ना आने पर। एक तो ये कि आपकी नींद बार बार टूट रही है रात को, यानी नींद की क्वालिटी की कमी है। आप रात में बार बार उठते हैं किसी भी काम की वजह से, मे बी आपको वॉशरूम जाना हो या फिर वैसे ही आपकी नींद खुल जाए ड्यू टू सम बैड ड्रीम और समथिंग एल्स। दूसरा ये होता है कि आप इनसोम्नियक ही हैं, आपको नींद ही कम आ रही है लगातार। तो उन दोनों केसेस में आपको जो फिजिकल प्रॉब्लम्स आने लगेंगी वो अलग अलग होती हैं। मान लीजिए आपकी नींद की क्वालिटी कम है तो आप दिन में फिर फटीग्ड महसूस करेंगे, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स होंगी, मेमोरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी, हो सकता है आपको एंग्जाइटी, पैल्पिटेशन, घबराहट, बीपी का इशू होना स्टार्ट हो जाए। और दूसरी तरफ अगर आप इनसोम्नियक हैं तो फिर उसके दूसरे तरह के कॉजेज होते हैं। बाकी नींद एक ऐसा फैक्टर है जिसकी कमी की वजह से फिजिकल और मेंटल दोनों लेवल पे इफेक्ट्स आ सकते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस करा मेमोरी, कंसंट्रेशन, एंग्जाइटी। बॉडी के लेवल पे आपका वेट गेन हो सकता है, आपको लेथार्जी फील हो सकती है, आप डायबिटीज के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, दिल की बीमारियों के लिए, रोग के लिए भी प्रोन हो सकते हैं। तो इस तरह के डिपेंडिंग अपॉन आपकी नींद की कौन सी कमी हो रही है, किस तरह की नींद की आपकी कमी हो रही है, आपके अलग अलग फिजिकल या मेंटल सिम्टम्स आ सकते हैं।
0: जी राजेश कुमार चौहान पूछ रहे हैं जालंधर से कि अच्छी नींद का मतलब क्या समझा जाए, और क्या जरूरी है कि 7-8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है, और रात को 5-6 घंटे की नींद, अगर गहरी नींद अच्छी है, नींद के दिन के समय में कितने घंटे की नींद जरूरी है?
1: अच्छा देखिए, इन्होंने पूछा कि अच्छी नींद कैसे पता लगे कि हम ठीक ठाक नींद ले रहे हैं नहीं ले रहे। अच्छी नींद का सबसे बड़ा पैरामीटर यह है कि जब आप सुबह को उठें तो आप फ्रेश महसूस करें, आप अगले दिन जाने के लिए एक्टिव महसूस करें, आप तरोताजा महसूस करें, आपकी रिकवरी अच्छी हो चुकी है, ये सबसे बड़ी इस बात की अलामत होगी। उसके अलावा ये जो इन्होंने पूछा कि क्या कितने घंटे की नींद जरूरी है, देखिए हमारी जो नींद की एक साइकिल है NREM से REM, वो लगभग 90 से 120 मिनट की होती है। तो इसमें अच्छा होता है अगर आप दिन में रात को 4-5 साइकिल्स कंप्लीट हो जाएं। तो अगर आप 99.9% लोगों में फॉल करते हैं तो ऑन एन एवरेज आपको 7 से 9 घंटे की नींद रात भर में ले लेनी चाहिए। अब इसके हमेशा अपवाद या एक्सेप्शंस तो होते ही हैं।
0: जी और सर, जैसा कि हम लोग ऑफलाइन बात कर रहे थे, ऑफ एयर बात कर रहे थे कि आजकल जो बच्चे हैं जिनके एग्जाम हैं, जो कॉलेज के बच्चे हैं, उन पे काम का बोझ बहुत अधिक रहता है, उनके वाइवास होते हैं, उनके सेमेस्टर एग्जाम होते हैं, उनको थीसिस लिखनी पड़ती है, और कहीं ना कहीं नींद जो है ना वो खराब होती है। तो ऐसे में बच्चे क्या करें, कैसे नींद को पूरी करें?
1: देखिए जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है उसमें जो वर्कलोड हमारे ऊपर आ चुका है उससे तो हम शायद सिस्टमैटिक लेवल पर डील कर पाए, इंडिविजुअल लेवल पर ज्यादा उसके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम अपने लिए ये बेहतर कर सकते हैं कि हम उसमें एक तो बिहेवियरल चेंजेस करें, यानी कि जब हमने पूरे दिन बहुत मेहनत करी है, बहुत काम किया है, रात को हम अनवाइंड करें, हम स्क्रीन्स कट ऑफ करें, हम खाने की जो लास्ट डिनर है वो स्लीप से 3-4 घंटे पहले तक ही ले लें, बस अनवाइंड करें, कुछ मेडिटेट करें, कुछ दिन में फिजिकल एक्टिविटी ऐड करें। और जैसे कि आपने कॉलेज स्टूडेंट्स का जिक्र किया, उनमें अक्सर एक और चलन है, कैफीन इंटेक बहुत होता है उनका, या तो कॉफी पी रहे होते हैं या कोई रेड बुल या कोई और इस तरह के एनर्जी ड्रिंक वगैरह ले रहे होते हैं। तो वो उस तरह के ड्रिंक्स को अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली इन द लेटर हाफ ऑफ द डे, दोपहर तक या शाम तक तो अगर आप जितनी जरूरत हो एक या दो बार आप ले सकते हैं, पर रात के समय के शाम सूरज ढलने के बाद आप वो ना लें ताकि वो आपकी नींद से इंटरफेयर ना करे।
0: जी, और विवेक अग्रवाल जी बेरठ से पूछ रहे हैं कि रात को बराबर नींद खुल जाती है, क्या करना चाहिए, मॉर्निंग के टाइम नींद अच्छी आती है।
1: हो सकता है कि इन्होंने जो अनवाइंडिंग है, यानी कि इसको आप ऐसे समझें कि एक गाड़ी अगर बहुत तेज स्पीड में चल रही है और हमको उसको पार्क करना है गैराज में जाकर, तो पहले हमें उसकी स्पीड स्लो करनी शुरू करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप तेज स्पीड में 60 की स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं और वहीं जाके आप गैराज में पार्क कर देंगे उसको। आप पहले उसको उसकी स्पीड को डीएस्केलेट करेंगे, 60 से 50, 40, 30 पे लाएंगे, तब जब आपकी गाड़ी रुकने वाली होगी तब आप जाके पार्क करेंगे। तो विवेक जी को ये करना चाहिए कि रात को सोते समय अनवाइंडिंग करें, यानी ये ना हो कि उनकी लाइट्स भी बहुत ज्यादा ब्लू लाइट है उनकी वो ऑन है, या फिर उनका स्क्रीन एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, वो फोन या लैपटॉप या मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं बिस्तर पर लेटकर, या फिर वो अपने दिमाग को कोई और ख्याल में मुब्तला कर स्टिमुलेट कर रहे हैं। अगर ऐसा करेंगे तो फिर उनके माइंड को तो पता है कि वो सोने जा रहे हैं, लेकिन उनकी बॉडी को अभी भी लगता है कि ये दिन ही है और जागने का समय है। तो इसलिए हो सकता है कि शुरुआत के 1-2-3 घंटे उनकी बॉडी को यही अडेप्ट करने में लग जाएं कि रात हो चुकी है और सोने का समय हो चुका है, इसलिए उनकी नींद सुबह के समय ज्यादा गहरी है और रात को नहीं है इतनी।
0: जी, सोने की समस्या जो है ना, सोने से जुड़ी समस्या आजकल लोगों में देखी जा रही है और बहुत सारे मैसेजेस हमारे स्क्रीन पर चमकते जा रहे हैं। अंकित जी पूछ रहे हैं कि डॉक्टर साहब वो 14-15 घंटे सोते हैं और कभी उनका उठने का मन नहीं करता है, और उठने के बाद वो बहुत ही लेजी फील करते हैं, क्या करना चाहिए?
1: ये तो सीरियस प्रॉब्लम है। अगर 15 घंटे वो लगातार ही सोए जा रहे हैं तो उन्हें तो फिर अब एक मेडिकल चेकअप करा लेना चाहिए अपनी, शायद उनको कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है। वो फिजिकल अपने फैमिली फिजिशियन से कंसल्ट करें, गेट देयर जनरल बॉडी चेकअप डन, विटामिन लेवल्स, थायराइड लेवल्स, ये सब एक बार चेक कर लें। उसके अलावा अगर लगातार 15 घंटे की नींद आ रही, मतलब वो 15 घंटे सो रहे हैं उसके बाद भी रिकवरी नहीं हो रही, यानी स्लीप की क्वालिटी बहुत खराब है, तो क्या वो बीच बीच में जाग तो नहीं रहे हैं, क्या वो स्नोर तो नहीं करते हैं, खर्राटे तो नहीं आ रहे हैं, बीच में सांस तो नहीं रुक

0: जाती है, इस तरह की चीजें, ये तो उनको इंडिविजुअल केस बेसिस पे ही एक डॉक्टर से कंसल्ट करना
1: जी,
0: चाहिए।
1: तरुण कुमार जी का एक सवाल है कि जब कभी उन्हें ड्यूटी के लिए सुबह 4 बजे उठना होता है तो अक्सर ऐसा होता है कि उनकी नींद रात में बार बार खुल जाती है और वो ठीक से सो नहीं पाते, और ऐसी स्थिति में यदि वो रात की अधूरी नींद की भरपाई के लिए दिन में कुछ समय के लिए आराम करते हैं या सो लेते हैं तो क्या या ये सेहत की दृष्टि से सही माना जाएगा? क्या दिन का आराम रात की नींद की कमी को कुछ हद तक पूरा कर सकता है?
0: दिन का आराम बिल्कुल रात की नींद की कमी को पूरा कर सकता है, बस उसमें हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो बहुत ज्यादा ना हो, वरना वो अगली रात की नींद के साथ इंटरफेयर करना स्टार्ट कर देगा।
1: जी
0: तो जो नींद के नैप, जो दिन के नैप्स हैं, उस नैप्स की स्वीट स्पॉट ये है कि वो आधे घंटे से लेकर 1.5 घंटे के बीच का हो, उससे ज्यादा ना हो। अगर आप दिन में 1.5 घंटे से ज्यादा सोना स्टार्ट कर देंगे तो वो आपकी अगली रात की नींद के साथ इंटरफेयर करेगा, फिर वो अगली नींद की क्वालिटी खराब करेगा।
1: जी तो सर, जब हम नींद की बात करते हैं तो क्या ये हमारा एक मेंटल ये मेकअप भी होता है कि चलिए आलस से आ रहा है तो जब चाह सो गए? क्योंकि बहुत सारे लोगों से हमने सुना है कि हमारी हॉबी है सोना।
0: जी, अगर सोने को हॉबी की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो इसमें तो ये कि फिर अपने आलस को ही उन्होंने बहाना बना दिया ये सोने का। बाकी अगर बार बार सोते रहेंगे, मतलब अगर मान लीजिए जोक्स अपार्ट, अगर हॉबी बना लेंगे तो आप, जाहिर है वो जब भी आपको टाइम मिलेगा आप दिन में बार बार करेंगे। तो ये जो ब्रोकन नींद है, यानी ब्रोकन स्पेल्स ऑफ स्लीप, थोड़े थोड़े नैप्स बार बार लेने की जो आदत है, ये ओवरऑल लॉन्ग टर्म में इसलिए हार्मफुल है क्योंकि रात को आपको जितनी डीप स्लीप में जाना चाहिए, जितनी गहरी नींद आनी चाहिए, उतनी गहरी नींद नहीं आ पाएगी फिर अगर आप दिन में बार बार सोते रहेंगे तो।
1: जी सर, हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़े हैं और सुनते हैं उनकी बात। हेलो हेलो हेलो
2: हेलो
1: जी, आप अपना नाम बताएं और सवाल।
2: हेलो
1: जी हेलो जी, आपको सुन पा रहे हैं? शायद इन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, थोड़ी देर में हम अपने कॉलर से बात करेंगे। सर, जब नींद की बात आती है तो हमारे बुजुर्गों का ख्याल आता है, क्योंकि बुजुर्ग बुजुर्गों की जो नींद होती है ना वो बहुत बिखरी हुई के है,
0: जी जी
1: तो ऐसे में क्या करना चाहिए? वो सुबह उठ जाते हैं फिर पूरे दिन उनकी इच्छा नहीं होती है कि वो किसी काम में लगे, तो ऐसे में बुजुर्गों को कैसे ध्यान रखने की जरूरत है?
0: ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कंचन जी। तो मैं बुजुर्गों के लिए पर्टिकुलरली और बाकी सबके लिए भी एक जनरल तौर पर कुछ नींद के लिए टिप्स दे देता हूँ यहाँ पर, ये अच्छा मौका है इस चीज के लिए। वो ये कि अच्छी रात की नींद की तैयारी रात को ही नहीं, दिन में शुरू हो जाती है। जब आप सुबह सोकर उठें उसके बाद आपका थोड़ा सन एक्सपोजर जरूर होना चाहिए, आपकी आंखों को और स्किन को थोड़ा सन एक्सपोजर मिले, थोड़ा आप धूप दिखाएं 10-15-20 मिनट, बेहतर रहेगा कि अगर वो सुबह की धूप हो ना कि दोपहर की, पहली बात तो ये। उसके बाद बुजुर्गों में एक टेंडेंसी ये होती है कि वो चाय बहुत पीते हैं या कुछ और इस तरह के जिसमें कैफीन हो, उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें ये कोशिश करें कि अगर उनको कितना भी इंटेक करना है वो दोपहर तक ही हो, दोपहर के बाद वो ये इंटेक ना करें, और कुछ फिजिकल एक्टिविटी दिन में ऐड कर दें,
1: जी
0: थोड़ी बहुत एक्सरसाइज या वॉक, या वो जितनी उनकी फिजिकल कैपेबिलिटी है, जितनी उनकी तवाना तो उस हिसाब से जितना वो कर सकते हैं थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी दिन में जरूर ऐड करें, तो वो फटीग एक्यूमुलेट होगा तो शाम को उनको बेहतर नींद आएगी।
1: जी, और जो महिलाएं मेनोपॉज के दौर से गुजर रही हैं उनकी नींद भी बहुत ज्यादा प्रभावित होती
0: जी
1: है,
0: जी
1: तो ऐसे में महिलाओं को क्या कुछ करने की जरूरत है ताकि नींद जो है बहुत अच्छी हो उनकी?
0: जी जो मेनोपॉज है वो एक बड़ा सेंसिटिव पीरियड होता है किसी भी विमेन, किसी भी वुमेन की, किसी भी औरत की जिंदगी में, क्योंकि उनका हार्मोनल चेंजेस इतने ज्यादा हो रहे होते हैं, तो उनकी बॉडी और माइंड दोनों बहुत फ्लक्चुएशन से गुजर रहा होता है उस टाइम पर। तो उस टाइम पे उनको जरूरी है कि जितनी चीजें उनके हाथ में नहीं है, यानी कि हार्मोनल चेंजेस वो तो नहीं है, लेकिन जितनी चीजें उनके कंट्रोल में है उसके लिए वो अपने एंड से एफर्ट्स करें। उन एफर्ट्स के लिए एक बेहतर न्यूट्रिशन हो सकता है, कुछ सप्लीमेंटेशन हो सकता है, मतलब वाइटामिन लेवल्स रेगुलरली चेक कर लें, उसके हिसाब से अपने डाइट प्लान मॉडिफाई कर लें, कुछ एक्सरसाइज इंक्लूड कर लें। न्यूट्रिशन, सप्लीमेंटेशन एंड बिहेवियरल चेंजेस फर्स्ट है।
1: जी, और सर जब नींद की बात होती है तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो स्क्रीन पर लगे रहते हैं और एक आदत बन चुकी है कि हम अपने स्क्रीन टाइम को सीमित नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में स्क्रीन के प्रति जो है कैसे उनकी दूरी बढ़ाएं ताकि नींद जो है अच्छी हो?
0: जी, स्क्रीन दो तरह से हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। पहली बात तो जो हम स्क्रीन

0: पे आमतौर पे देख रहे होते हैं वो रील्स वगैरह होती हैं,
1: जी
0: तो वो हमारे माइंड को स्टिमुलेशन जोन में रखते हैं, यानी कि वो एक्साइटेड रखते हैं, हमको डोपामीन निकलता रहता है लगातार। दूसरा ये कि स्क्रीन्स ब्लू लाइट एमिट करते हैं, ब्लू लाइट एमिट करने से अगर आप शाम के टाइम पे इस्तेमाल करते हैं फोन या स्क्रीन का, तो ऐसा लगता है माइंड को और बॉडी को कि अभी भी दिन है, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि ये जो ब्लू लाइट है ये नेचुरली तो रात को नहीं होती है, ये दिन में सन की रेज में जरूर शामिल होती है। तो इन दोनों वजहों से, एक तो स्टिमुलेशन जिस तरह का कंटेंट कंज्यूम हो रहा है, और दूसरा ब्लू लाइट एमिशन, उन दोनों वजह से नींद पे सबसे ज्यादा अगर आजकल कोई घातक इफेक्ट कोई चीज करती है तो वो ये साधन है, ये उपकरण है जिसे मोबाइल फोन बोलते हैं। नींद हमारे लिए एक सुविधा थी और हमने उस सुविधा से अपने आप को रोकने के लिए साधन बना लिए हैं। तो इससे इसलिए सबसे अच्छा यह है कि आप जब बेड टाइम हो उससे कम से कम 4 घंटे पहले कोई भी स्क्रीन वगैरह कट ऑफ कर दें। आप बुक पढ़ सकते हैं, बात कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, कुछ और इस तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन स्क्रीन रात को खास तौर पर कट ऑफ कर दें।
1: जी, जबकि होता उल्टा है,
0: उल्टा होता है,
1: जो जो रात बढ़ती है स्क्रीन टाइम जो है बढ़ता चला जाता है। नवलू वरक पूछ रही है कि क्या दिन में सोना डॉक्टर साहब उचित है?
0: जी, हमने बात कर ली इस बारे में, दिन में सोने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते जो आपका नैप है, जो आपने झपकी ली है नींद में, उसका ड्यूरेशन लिमिटेड है, सीमित है।
1: जी, तो दोस्तों अगर नींद से जुड़ी आपकी भी कोई समस्या है या थकान बनी रहती है तो आप डॉक्टर साहब तक सीधे सवाल पहुंचा सकते हैं। हमारे नंबर है व्हाट्सएप नंबर 9868107070, और डॉक्टर साहब की पसंद के बहुत ही प्यारे प्यारे गीत हम सुनवाते रहेंगे इस प्रोग्राम में।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: दादी दादी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।
3: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
4: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
3: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
4: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आकाशवाणी के FM रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है रेनबो हेल्प।

0: लाइन और हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला, रेजिडेंट डॉक्टर जीटीबी हॉस्पिटल, और बातें हो रही हैं अच्छी नींद की, क्योंकि नींद बहुत ज़रूरी है। अगर हम अच्छी नींद लेंगे तो थकान जो है ना वो हमारी डिक्शनरी में तो बिल्कुल होगी ही नहीं। सर, बहुत से लोगों के मैसेजेस भी आ रहे हैं, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है कि जो लोग अपने काम के प्रति बहुत अधिक समर्पित होते हैं तो उन्हें लगता है कि जब तक कोई काम पूरा ना हो जाए तो नींद बिल्कुल नहीं लेना है, तो ऐसे भी बोलो क्या करें?
1: देखिए, ये तो एक अपने आप में बहुत नीश प्रॉब्लम है। इस तरह के लोग आजकल तो कम कम ही होते जा रहे हैं। लोगों को अपने काम से दिलचस्पी कम हो रही है, एलियनेटेड महसूस करते हैं। मीर का तो मिसरा है, पैदा कहाँ है दहर में ऐसे परागंदा तबा लोग। तो वो, लेकिन मैं उनके लिए एक ये सजेशन दे सकता हूँ कि आपका अगर कोई काम पेंडिंग रह गया है और वो काम अब नहीं हो सकता, तो अब आपके वो दिमाग में एक टैब खुला हुआ है और वो टैब रात भर खुला रहेगा और वो आपकी नींद के साथ मुसलसल डिस्टरबेंस क्रिएट करता रहेगा। तो आप एक काम जो कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि आप एक जर्नल रख लें, उस जर्नल में उस प्रॉब्लम के बारे में लिख दें। तो जब आप उस चीज़ को लिख देते हैं तो वो रिफ्लेक्टिव राइटिंग होती है या कुछ वरी जर्नलिंग होती है। इस तरह का अगर आप कुछ नुस्खा आजमाएं तो वो हो सकता है कि उसकी इमोशनल पोटेंशियल को थोड़ा कम कर दे और वो आपकी नींद के साथ आगे जाके कम डिस्टर्बेंस कर क्रिएट कर।
0: जी, और नींद से जुड़ी जब समस्या होती तो कैसे लोग एक स्वस्थ तरीके से अपना रूटीन बनाकर चलें ताकि वो नींद भी पूरी कर ले और अपने सारे काम जो है उसे भी समय पर पूरा कर ले?
1: जी, ये हमने टुकड़ों टुकड़ों में तो बात कर ली है इस पूरे टॉक के दौरान। मैं इसको थोड़ा समराइज कर देता हूँ। पहली बात तो ये कि जो नींद, अच्छी नींद है, वो रात से नहीं, उसकी प्रक्रिया सुबह से ही स्टार्ट हो जाती है, सुबह से ही शुरू हो जाती है। तो पहला ये कि सन एक्सपोजर, थोड़ा 10-15-20 मिनट धूप जरूर आपको लगानी चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जो कैफीन इनटेक है उसको लिमिटेड रखें, चाय कॉफ़ी को दोपहर के बाद ना पिए। तीसरा ये कि सोने से पहले स्क्रीन्स कट ऑफ करना स्टार्ट कर दें और डिनर सोने से एटलीस्ट 3-4 घंटे पहले करें। कुछ फिजिकल एक्टिविटी दिन में इंक्लूड कर लें, कुछ ना कुछ, कुछ एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, कुछ और ऐसे जो भी आप करना चाहें वो उसमें इंक्लूड कर लें। और लास्ट में रात को जब आप सोने जा रहे हो तब आप कुछ लाइट वॉक या कुछ लाइट म्यूजिक, या जैसे हम रेडियो भी सुन सकते हैं, या ये कि कुछ मेडिटेशन कर लें। बेसिकली अनवाइंडिंग, जिस भी चीज़ से आपको रिलैक्सेशन महसूस हो वो सब रिलैक्स कर लें। कुछ लोग आयुर्वेदा अपनाते हैं तो वहां पे कैमोमाइल टी या फिर तुलसी टी या कुछ इस तरह की हर्बल टी या सूप भी पी लेते हैं आफ्टर डिनर, उससे भी उन्होंने अनवाइंडिंग में, या कुछ वार्म मिल्क, कुछ थोड़ा गर्म दूध इस तरह का लेने के लिए भी उनको वो रिलैक्सेशन और एंगजाइटी और उस सब में हेल्प करता है। तो जिस भी, जो भी आप, यू मेक योर ओन अनवाइंडिंग शेड्यूल जिससे भी आपको हल्का महसूस हो, आपको स्ट्रेस कम हो और आप दिन भर का लोड उतारते रहें और अपने कंधों पर सिर्फ बोझ उतर चुका है, तब उसके बाद बिस्तर पर जाएं।
0: जी, और प्रियंका का मैसेज आया है कि उनके पिताजी की उम्र जो है वो 70 से अधिक है, वो बैठे बैठे कहीं भर पर भी सोने लगते हैं और वो ये दिन रात कभी भी किसी भी जगह, चाहे वो कहीं पर भी हो, पार्टी में हो, घर में हो, 4 लोग बैठे हों, तभी भी ये उनका
1: जी
0: ऐसा
1: जी
0: ही
1: जी
0: रहता है।
1: मैं उनसे पूछूंगा कि उनका वजन वगैरह अगर ज्यादा है तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया एक बीमारी है जिसमें आपको रात को सांस नहीं आती, आपकी श्वास नली पे प्रेशर पड़ने की वजह से आपकी नींद बार बार खुलते रहती है। ऐसे लोग रात को तो पूरा 8-10 घंटा सो जाते हैं लेकिन उनकी नींद की क्वालिटी बहुत खराब रहती है, क्योंकि बार बार सांस रुकने की वजह से उनकी रात में कई बार आंख खुलती है और जब वो रात को रिकवरी पूरी नहीं होती तो दिन में उनको बार बार नींद आती है। और बिल्कुल यही सिम्टम्स उसके आ रहे होते हैं कि वो कहीं भी पार्टी में हो या कहीं गए हो या कुछ काम कर रहे हो, उनको बार बार नींद आती रहती है और वो इन जनरल बड़ा लेथार्जिक महसूस करते हैं। इसके बारे में उनको अपने एक डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, अपने फैमिली फिजिशियन से बात कर लेनी चाहिए।
0: जी, और सर, जब छोटे बच्चों की नींद होती है, जो 5 से 7 साल के बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, वो भी कभी भी सो जाते हैं या बहुत देर रात तक जगते हैं और फिर स्कूल जाने के समय में उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती है?
1: ये 5-7 साल के जो बच्चे हैं आजकल, एक तो उनमें भी स्क्रीन का बहुत ट्रेंड आ गया है। माँ बाप उनको फोन या टीवी या लैपटॉप इस तरह की स्क्रीन्स मुहैया करा देते हैं, तो रात को वो अक्सर जब स्कूल से और ट्यूशन से फ्री हो जाते हैं तो उसके बाद वो उसमें लग जाते हैं। तो एक तो वो अवॉइड कराएं उनको, उनके न्यूट्रिशन का ध्यान रखें कि वो जंक फूड कम खाएं और घर का खाना जिसमें सारे वाइटामिन, सब्जियां, प्रोटीन बराबर मात्रा में हो, वो उनका प्रॉपर रहना चाहिए ताकि उन्हें लिथार्जी या थकान उस सेंस में ना हो।

0: उसके बाद ये कि ये उनके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सोने का माहौल ठीक से बनाए, ब्लू लाइट्स अवॉइड करें, रात को लाइट बंद करें और उनको स्टिमुलेशन वाले जितनी चीजें होती हैं उससे उनको परहेज कराएं एक टाइम के बाद, शाम के बाद, तो उससे उम्मीद है कि वो टाइम पर सोने लगेंगे और सुबह तरोताजा उठेंगे, स्कूल में भी बेटर परफॉर्म करेंगे।
1: जी, और आजकल बच्चों में क्या बड़ों में भी जंक फूड का जो प्रचलन है वो बहुत अधिक है, बहुत अधिक, क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं होता, तो क्या ये सारी चीजें हमारी नींद को प्रभावित करती हैं?
0: जी, जंक फूड बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ कैलोरीज दे रहा है आपको और कुछ जो सारे एसेंशियल विटामिंस या मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स आपको बॉडी के लिए चाहिए वो तो दे नहीं रहा है, सिर्फ कैलोरीज दे रहा है, तो वेट गेन भी करा रहा होता है आपको, शुगर स्पाइक भी करा रहा होता है, आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी करा रहा होता है, और ये सारे फैक्टर्स हैं जो नींद, एक अच्छी नींद के आगे बाधा बन जाते हैं।
1: तो क्या करना चाहिए ऐसे में
0: ये करें कि आप, तीन स्टेप्स हैं। पहला स्टेप होता है बिहेवियरल चेंजेस, जिनके बारे में हमने बात कर ली कि रात को कैसे अनवाइंड करना है। दूसरा होता है बेहतर न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में आप हरी सब्जियां या सैलड्स ये सब अपने हर मील में इंक्लूड करना स्टार्ट करें। प्रोटीन पे ज्यादा, जो लोग अगर नॉन वेजिटेरियन है तो एग्स या मीट, या अगर वेजिटेरियन है तो पनीर या सोयाबीन या डेयरी प्रोडक्ट्स, इन सारी चीजों को ज्यादा आप उपयोग करें। कार्बोहाइड्रेट्स कम करें, कुछ कुछ नियमित एक्सरसाइज करना स्टार्ट करें, और अगर इससे भी कुछ कमी रह जाती है तो डॉक्टर की कंसल्टेशन में कुछ सप्लीमेंट्स भी लिए जा सकते हैं। जैसे कई बार विटामिन डी या विटामिन बी, इन कमी की वजह से भी आपकी नींद या फिर फटीग आपको या थकान हो सकती है।
1: जी, तो क्या अगर किसी व्यक्ति में बहुत अधिक थकान रहती है या हमेशा थके थके से रहते हैं तो क्या इसकी वजह सिर्फ नींद की कमी है?
0: नहीं,
1: और भी बहुत,
0: बिल्कुल भी नहीं, नींद इसकी एक वजह है। आज हमने इस पर ज्यादा फोकस इसलिए करा क्योंकि हमारा टॉपिक ये था, बाकी इसके अलावा बहुत सारी वजहें हो सकती हैं, सिस्टमिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, थायराइड की बीमारी हो सकती है, विटामिन की कमी हो सकती है, लिवर किडनी हार्ट की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कोई और मेडिकल इशू हो सकता है, उन सब की वजह से आपको नींद कमी हो जाए, नींद की क्वालिटी या क्वांटिटी दोनों कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। तो उसके लिए हमें रेगुलरली चेकअप डॉक्टर के पास, एनुअल या फिर सिक्स मंथली चेकअप कराते रहना चाहिए, और कोई भी अगर सिम्टम आ रहा होता है तो उस सिम्टम को एक वार्निंग की तरह उस पर एक्ट करना चाहिए, उसे परस्यू करना चाहिए, ये नहीं कि आप उसको इग्नोर करते रहें।
1: जी, तो दोस्तों सर से और भी बातें हम जानेंगे, लेकिन सर की ही पसंद के बहुत ही प्यारे प्यारे, बहुत ही मीठे मीठे गीत हम सुनवाते रहेंगे FM रेनबो पर। जुड़े रहिए दिल से दिल तक।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registration.tourist.uk.gov.in।
2: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 29 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात।
2: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
3: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
2: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें, विजिट करें registration.tourist.uk.gov.in।
3: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
5: जी बिल्कुल, ये है आपका FM रेनबो, दिल से दिल तक प्रोग्राम रेनबो हेल्पलाइन, और मैं आपके साथ कंचन, साथ ही हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला, और आज बात हो रही है कि कैसे आप अच्छी नींद लें ताकि थकान आपसे कोसों दूर रहे। सर बहुत सारी बातें हो गई, बहुत सारे मैसेजेस हमने ले लिए, अब चलते चलते क्या संदेश देंगे हमारे श्रोताओं को ताकि वो अपनी नींद जो है ना वो बहुत अच्छी तरह से पूरी कर सकें, सेहतमंद रहें और थकान उनके डिक्शनरी में ना हो।
6: जी मैं सब जाते जाते बस यही संदेश देना चाहूँगा सारे सामीन को, श्रोताओं को, कि नींद को प्रायोरिटाइज करें, नींद को अपनी जिंदगी का उतना ही इम्पोर्टेंट हिस्सा समझें जितना आप बेदारी को या जागकर काम करने को समझते हैं। उसके लिए आप नियमित जितने उपाय हैं वो भी अपनाएं, स्क्रीन्स कट ऑफ करें, डिनर सोने के टाइम से पहले करें, रात को ब्लू लाइट अवॉइड करें, मेडिटेट करें और अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखें, अपने जंक फूड अवॉइड करें और दिन में हो सके तो कैफीन इंटेक अवॉइड करें। इससे आपकी नींद रात को क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी वाइज दोनों बेटर होगी, और अगर आप स्लीप प्रायोरिटाइज करेंगे तो आपका वर्क ऑटोमेटिकली प्रायोरिटाइज हो जाएगा क्योंकि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। आप जब काम कर रहे होंगे तो बेहतर काम कर पाएंगे, ज्यादा काम कर पाएंगे।
5: जी एक मैसेज अरुणा जी का आया है कि उनके पिताजी की नाइट ड्यूटी रहती है लेकिन वो सुबह में भी फिर सो नहीं पाते हैं, तो ऐसे में उनको क्या करना चाहिए?
6: जी अगर नाइट ड्यूटी है तो नाइट ड्यूटी के अलावा, नाइट ड्यूटी में आप एक काम कर सकते हैं कि सुबह को जब आप वापस आ रहे हैं तो आप जो ब्लू लाइट फिल्टर्स होते हैं वो वाले चश्मे उनको दे सकते हैं ताकि कुछ सूरज का जो इफेक्ट है वो अंडू हो। जब वो सुबह को वापस घर लौट जाएं उसके बाद कुछ देर तक एक अंधेरे कमरे में रह सकते हैं, स्क्रीन्स अवॉइड कर सकते हैं ताकि जब बाहर की धूप है उससे उनके ब्रेन को ये सिग्नल ना मिले कि अभी अभी दिन निकला हुआ है और उनको नींद प्रॉपर ना आ पाए। बाकी कोशिश करें कि अगर नाइट ड्यूटी है तो उसके बीच में जो जो गैप्स होते हैं उसमें रात को ही सो लें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि हमारी बॉडी की एक इंटरनल क्लॉक भी होती है, हमारी एक जैविक घड़ी भी है जो अंदर ही अंदर चल रही है। तो नाइट ड्यूटी वैसे तो अननेचुरल है क्योंकि उसके अगेंस्ट जा रही है, लेकिन अगर मजबूरी है तो कोशिश करें कि जो बीच में दिन मिल रहे हैं उसमें ये ट्राई होना चाहिए कि कम से कम तब वो अपनी चीजों को कंट्रोल करें।
5: जी संजय का मैसेज है, वो कह रहे हैं कि उन्हें नशे की आदत है, वो शराब पीते हैं और स्मोक भी करते हैं और कहीं ना कहीं उनकी नींद प्रभावित हो जाती है।
6: जी ये जो अल्कोहल है और एक जो दूसरा नींद की दवाइयां होती हैं, इन दोनों का एक ही बात है, वो ये है कि ये आपको बेहोश तो कर देती हैं लेकिन ये आपको सुलाती नहीं है। अल्कोहल पी के कई लोग पास आउट हो जाते हैं, रात को रोजाना शराब पीते हैं या फिर कोई और नींद की दवा खाते हैं और उसके बाद पास आउट हो जाते हैं। तो उससे होता यह है कि आप बेहोश हो गए, आपको लग रहा है कि आप सो गए हैं लेकिन बॉडी में जो स्लीप की जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी नहीं हो रही होती है। तो उसमें तो यही होता है सबसे पहला इफेक्ट कि जितने भी तरह के एडिक्शन है, भले ही वो स्मोकिंग का हो जिसमें निकोटीन एडिक्शन है या फिर अल्कोहल का हो, उस एडिक्शन को कम किया जाए और उस एडिक्शन से होने वाले नुकसानात को समझा जाए और वो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत नुकसानदायक है।
5: सर आजकल हम लोग प्रकृति से थोड़े से दूर होते जाते हैं तो अच्छी नींद के लिए और थकान से बचने के लिए प्रकृति से जुड़ना कितना जरूरी आप मानते हैं?
6: प्रकृति से जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो मैंने शुरुआत में अभी तक कई बार मैं दोहरा भी चुका हूँ इस बात को कि धूप या सनलाइट का एक्सपोजर बहुत जरूरी है, हम लोगों का आजकल बिल्कुल नहीं होता, हम अपने बंद कैबिन्स में रहते हैं ऑफिसेस के उसमें रहते हैं। उसके अलावा जितने भी नेचुरल लैंडस्केप्स हैं वो सब आपको एक तरह से रूहानी तस्कीन भी पहुंचा रहे होते हैं, यानी आपको एक सोलफुल एक्सपीरियंस भी दे रहे होते हैं, यू फील मोर रिलैक्स्ड मोर काम, एंग्जाइटी कम कर रहे होते हैं आपकी। तो अगर आप वैसे ही रहेंगे तो वो सिर्फ नींद के अलावा नेचर से कनेक्ट होने के तो पूरी जिंदगी में काफी आपको फायदे वाले एक्सपीरियंसेस मिलेंगे।
5: जी सर आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी अच्छी अच्छी बातें शेयर की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
6: थैंक यू सो मच, थैंक यू, आपका बहुत धन्यवाद।
5: दोस्तों आप इसी तरह से जुड़े रहिए आकाशवाणी के FM रेनबो के साथ दिल से दिल तक। मैं कंचन यहीं पर लेती हूँ विदा, अगला प्रोग्राम आशियाना लेकर आएंगी हमारी दोस्त शालिनी। दीजिए विदा मुझे, नमस्कार।

0: आकाशवाणी।
1: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना फैमिली शो आशियाना आपके अपने 102.6 आकाशवाणी रेनबो पर, और आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे शालिनी। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक खास टॉपिक, एक ऐसा टॉपिक जो हर घर से जुड़ा हुआ है। हमारा आज का टॉपिक है कि क्या घर के काम करना सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी है या फिर परिवार का हर सदस्य बराबर का भागीदार है। दोस्तों, अक्सर हम सुनते हैं कि आज मैंने अपनी पत्नी की मदद कर दी, आज तो मैंने अपनी मम्मी की बड़ी हेल्प की थी। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि क्या घर के काम में हाथ बटाना मदद कहलाता है या फिर ये परिवार के प्रति हमारी एक साझा जिम्मेदारी है। आज इसी टॉपिक पर, इसी जरूरी टॉपिक पर करने वाले हैं हम खुलकर ढेर सारी बातें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और शुरुआत इस प्यारे से गाने के साथ।

बिल्कुल दोस्तों, ख्वाबों के तिनको से आशियाना बनता है और आशियाना में बहुत सारे काम होते हैं। और अब ना ज़माना बिल्कुल बदल गया है। आज की जो नारी है ना, वो घर भी संभाल रही है और ऑफिस भी। ऐसे में अगर पति, बच्चे या परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं वो छोटे छोटे से काम को बांट लें तो घर में प्यार भी बढ़ता है और सम्मान भी। क्योंकि परिवार ना कोई वन मैन शो नहीं है, बल्कि ये तो है टीम वर्क। और घर के जो इतने सारे काम हैं, अगर अकेले एक बंदा करेगा तो सोचिए कितना टाइम और मेहनत लगेगी। और जब आपको दोहरी जिम्मेदारी संभालनी हो, ऑफिस भी और घर भी, तो ज़रूरत ये है कि सब लोग एक टीम की तरह मिलकर काम करें और आपके आशियाने में बना रहे प्यार और सब कुछ हो फर्स्ट क्लास।

बिल्कुल दोस्तों, हम चाहते हैं कि हमारे आशियाने में सब कुछ फर्स्ट क्लास हो, यानी सब कुछ टिप टॉप रहे, हंसी खुशी सब कुछ रहे और कभी भी कोई बहस ना हो, कोई मनमुटाव ना हो, कोई तकरार ना हो। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आपस में एक सामंजस्य बना रहे और घर के काम होते रहे। आई एम टेलिंग यू, अगर घर के काम टाइम से होते रहेंगे तो कभी आपको कोई बहस देखने को नहीं मिलेगी। और होता क्या था ना कि पहले के समय में जो घर के काम होते थे उनको महिलाओं की जिम्मेदारी समझा जाता था, लेकिन आजकल ऐसा बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि आज जो नई पीढ़ी है वो ये समझ रही है कि खाना बनाना, बच्चों का ध्यान रखना या फिर घर संभालना, ये कोई ना जेंडर रोल नहीं है बल्कि लाइफ स्किल है। अगर बेटा अपना कमरा साफ करता है, पति किचन में हाथ बटाता है, तो वो किसी पर एहसान नहीं कर रहे बल्कि वो लोग रिश्तों की बराबरी को निभा रहे हैं, उसे समझ रहे हैं। तो अगर आप अपने घर में ऐसा नहीं कर रहे हैं तो चलिए आज से करिए एक नई शुरुआत और घर के कुछ कामों की जिम्मेदारी खुद उठाइए। आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आशियाना।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
2: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
4: पता का चाय, गजब का स्वाद।

102.6 आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आशियाना। और दोस्तों, वैसे परिवार में ना झूठ कपट की कोई जगह नहीं होती, बल्कि परिवार के लोगों के लिए सम्मान होना चाहिए। एक बात बताइए, क्या आपके घर में काम बटे हुए हैं? क्या आपके पिता या पति किचन में मदद करते हैं, या फिर आपकी माँ आज भी सब कुछ अकेले संभालती हैं और आप बड़े गर्व के साथ बोलते हैं कि मेरी माँ तो बीमारी में भी या किसी भी सिचुएशन में सबका ध्यान रखती हैं और सारे काम करती हैं। सोचिए ज़रा। और वाकई में अगर ऐसा है तो आपको सोचने की ज़रूरत है कि ऐसी सिचुएशन में आपका क्या रोल होना चाहिए, क्या रुख होना चाहिए।

तो अपनी माँ के प्रति भी थोड़ा सा प्यार जताइए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मदर्स डे पर ही प्यार दिखाना है या किसी खास आयोजन पे। हर दिन माँ के प्रति, घर के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करिए, उन्हें समझिए, उनसे बात करिए, उनसे कम्युनिकेट करिए। ये बहुत ज़रूरी है किसी भी आशियाने की खुशियों के लिए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
2: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

बिल्कुल दोस्तों, हौले हौले सब होगा, क्योंकि सालों से घरों में कुछ ऐसी चीजें चली आ रही हैं जो आज के जमाने में बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। क्योंकि आज ना बहुत कुछ बदल चुका है, सबके रोल घर में बदल गए हैं। अब महिलाएं घर और बाहर दोनों संभाल रही हैं, तो ऐसे में कुछ चीजों को बदलने की जरूरत है। और वो सब कुछ बदलेगा, लेकिन धीरे धीरे, उसमें समय लगेगा, लेकिन उसमें जरूरत है आप सभी को अपने रोल को पहचानने की और कहीं ना कहीं एक टीम की तरह अपने आशियाने में काम करने की। ऐसा नहीं है कि अपने आराम को देखें और बस आराम से बैठे रहें। तो देखिए अपने घर में क्या कुछ काम है और खुद से इनिशिएटिव लीजिए और धीरे धीरे सारे काम निपटाइए। और जब टीम की तरह काम होगा ना घर का, तो और जब काम हो ही जाएगा तो कहीं कोई बहस की गुंजाइश ही नहीं रहेगी, कोई मनमुटाव नहीं होगा, और बस एक दूसरे के साथ जो आपका बॉन्ड है ना, वो और स्ट्रांग हो जाएगा।

दोस्तों वाकई में कई बार परिवार में बॉन्डिंग इतनी अच्छी होती है कि सब बिना कहे ही एक दूसरे की बात समझ जाते हैं और सारे काम खुद ब खुद होते चले जाते हैं, और तब बस यही लगता है कि वी आर ब्लेस्ड टू हैव दिस काइंड ऑफ फैमिली। और पता है, और जब घर में बच्चे होते हैं तो उनकी परवरिश की कोशिश की जाती है कि सारी अच्छी बातें सीखे, लेकिन बच्चे वो सीखते हैं जो वो घर में देखते हैं। इसीलिए जब वो अपने पिता को घर का काम करते हुए देखते हैं, अपने बड़े भाई को काम करते हुए देखते हैं, तो वो बचपन से ही वो सम्मान और बराबरी सीखते हैं। वो सीखते हैं कि घरेलू काम ना किसी एक जेंडर की जिम्मेदारी नहीं है। तो सच कहूँ तो घर के काम करते करते ना थकान तो सबको होती है, लेकिन काम करना, हाथ बटाना सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। और ये सोच के नहीं कि आप किसी की मदद कर रहे हैं, बल्कि ये सोच के कि हाँ, घर का काम है, हम सबको मिलके करना है। तो फिलहाल आकाशवाणी रेनबो पर बातों का सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है, जुड़े रहना है हमारे साथ।

0: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तो मैं सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ, तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात। दिल की तरह

जमाने गाने नए पुराने नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

बिल्कुल, आपका और हमारा साथ बना हुआ है। आकाशवाणी रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है आशियाना, और आज आशियाना में बात हो रही है अपने घर और परिवारजनों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझने की। क्योंकि जहाँ पर ना जिम्मेदारियाँ बांटी जाती हैं, वहीं पर रिश्ते टूटते नहीं हैं बल्कि मजबूत होते हैं। इसीलिए अपने आशियाने में ज़रूरत है आपको कामों को बांटने की, जिससे किसी एक पर ना ज़्यादा लोड ना पड़े और साथ ही साथ काम खत्म करके परिवार जनों के साथ समय बिताने का, उनके साथ कम्युनिकेट करने का समय आपको डेली की बिजी लाइफ में मिल सके। समय हो गया है 2:44 और मेरे जाने का समय करीब आने वाला है, लेकिन आकाशवाणी पर आपके पसंदीदा गानों का सिलसिला थमने वाला नहीं है।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

हमेशा गुनगुनाते रहना और एंजॉय करते रहना परिवार में, ये तभी हो पाता है जब घर में नहीं होता कोई क्लेश और सारे काम होते रहते हैं। जब एक टीम की तरह आप अपने आशियाने में हर काम को निपटाते हैं, कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है तो प्यार भी बना रहता है। जी हाँ दोस्तों, आकाशवाणी रेनबो पर प्रोग्राम आशियाना में आज बात हो रही है जिम्मेदारी को समझने की, अपने परिवार में एक टीम की तरह काम करने की। दोस्तों कई बार क्या होता है ना कि माँ या पत्नी बिना शिकायत के सब कुछ काम करती रहती हैं, लेकिन क्या हमने कभी पूछा है आप थक गई होंगी, या कभी बिना कहे एक कप चाय बनाई है, या रसोई में दो मिनट साथ खड़े होकर बातें करते करते कुछ काम निपटाए हैं। यकीन मानिए, ये जो छोटे छोटे से काम, छोटी छोटी सी बातें होती हैं ना, ये रिश्तों में प्यार भर देती हैं। तो जरूरत है चार कदम साथ चलने की और हर दम साथ निभाने की।

चार कदम साथ चलने की ज़रूरत है, हाथ में हाथ मिला के और एक टीम की तरह, एक टीम स्पिरिट के साथ घर में एक बॉन्ड बनाने की ज़रूरत है। अगर कहीं आपको लग रहा है कि आपके घर में कलेश कुछ बढ़ने लगा है, तो अपने आप को नियंत्रित करिए, गुस्से को कंट्रोल करिए और कोऑर्डिनेशन को बढ़ाइए। क्योंकि बात सिर्फ इतनी सी है कि घर चलाना, घर के सारे काम करना, फिर चाहे वो कुकिंग हो या फिर बाकी के काम, वो सिर्फ महिलाओं के काम नहीं है बल्कि परिवार के हर सदस्य की जिम्मेदारी है। और जब जिम्मेदारियां साथ निभाई जाती हैं, तभी परिवार सच में परिवार बनता है। इसी खूबसूरत सोच के साथ फिलहाल आपको छोड़े जाते हैं एक बढ़िया से गाने के साथ। आप दीजिए अपनों का साथ, हाथ बटाइए और बढ़ाइए प्यार। समय 2:56 और फिलहाल मेरे जाने का समय, आपको छोड़ जाते हैं इस बढ़िया से गाने के साथ। आगे आप सुनेंगे प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर, आपके अपने आकाशवाणी रेनबो पर। इसलिए आपको कहीं नहीं जाना है, जुड़े रहना है हमारे साथ।

कुछ वादे दिल में रह जाती हैं, कुछ लोग वक्त के साथ और करीब आ जाते हैं। कुछ वादे दिल में रह जाते हैं, कुछ लोग वक्त के साथ और करीब आ जाते हैं। कभी मोहब्बत सुकून सी लगती है, कभी यादों में भी जिंदा रह जाती है। हर सफर अकेला नहीं होता, हर दिल हमेशा तन्हा नहीं होता। कुछ एहसास वक्त से भी गहरा हो जाते हैं और कुछ गाने दिल का हिस्सा बन जाते हैं, और फिर दिल कह उठता है, आई विल बी देयर।

कुछ साथ दिल को हिम्मत देते हैं, कुछ लोग हर मोड़ पे साथ रहते हैं। हर मुश्किल हल्का लगने लगता है जब कोई साथ में अपना लगता है और दिल कह देता है आई विल बी। वेल यस, हेलो हेलो एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल द लिसनर्स हु आर ट्यून इन विद अस राइट नाउ। एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल मंडे आफ्टरनून इट इज, राइट? आई मीन द डे स्टिल फील्स फ्रेश, द स्काई लुक्स अ लिटिल काल्मर समहाउ। टुडे एज आई वॉक पास द रोड, यू नो, आई जस्ट फेल लाइक द स्काई इज लुकिंग अ लिटिल मोर काल्मर समहाउ। एंड मे बी दिस इज द परफेक्ट लिटिल मोमेंट टू स्लो डाउन, राइट? टू जस्ट रिलैक्स एंड जस्ट इंजॉय सम गुड म्यूजिक टुगेदर। सो यस, वेर एवर यू आर राइट नाउ, मे बी एट वर्क, at home, traveling, stuck in the traffic jam, or maybe just taking a small break from the day, well, you are welcome to this FM Tragoband family. You are welcome to the Monday afternoon show. You're welcome to RJ's Choice. I'm so glad that you're here with me. I'm so glad that you and I, we get to share this afternoon together. And yes, you are listening to RJ's Choice right here at your one stop, your FM Tragoband, only at 103 megahertz. We are live right now straight from the heart of Akashvani Kohima, and this is your radio buddy, your RJ Kenny, on the mic with you, keeping you company till 4 p.m. And you know, if we have to talk about music, I honestly or personally believe that, you know, music always has a beautiful way of making afternoons feel lighter, making afternoon, or for that matter, you know, making a day feel more pleasant, right? I mean, a good song, a familiar melody, a little company, and sometimes that's all it takes to make the day feel better, to make the day feel lighter, to make the day feel more pleasant, right? So once again, thank you all so much for letting me be a part of your afternoon today. So now let's make this next hour easy, relaxing, and filled with beautiful music together.

खूबसूरत शाम और हल्का सा सुकून, म्यूजिक के साथ दिल को मिलता है जुनून। खूबसूरत शाम और हल्का सा सुकून, म्यूजिक के साथ दिल को मिलता है जुनून। दिल की थकान धीरे धीरे धुल जाती है, हर धुन दिल को छू जाती है। कुछ पल बस जी लेना चाहिए, कुछ गाने महसूस कर लेना चाहिए। मुस्कुराहट भी साथ आ जाती है और शाम और हसीन हो जाती है जब म्यूजिक का सफर शुरू होता है। जी हाँ श्रोताओ, म्यूजिक का सफर शुरू हो चुका है एंड आई वार्मली वेलकम यू टू आवर वेस्टर्न म्यूजिक शो आरजे'स चॉइस, जहां पे थोड़ी होगी हिंदी, थोड़ी होगा इंग्लिश, वेयर वी टॉक इन ऑल लैंग्वेजेस। सो स्टे विद अस एंड एंजॉय द म्यूजिक राइट हियर एट एफएम ट्रैगोपैन ओनली एट 103 मेगाहर्ट्ज़। एंड यस, इट इज ब्रॉडकास्टिंग लाइव जस्ट फॉर यू राइट नाउ हियर एट आकाशवाणी कोहिमा स्टेशन।

Well, yes, ladies and gentlemen, Paint My Life a Love by Michael Learns to Rock, MLTR, right there for us. And it's almost time for me to wrap up our Western music show, RJ's Choice, but I will be back again at 7:30 with more music, more thoughts, more hacks, more facts, and so on and so forth. So I hope to see you there again. 7:30 is the time. Stay tuned, because right after this, it's going to be your favorite show, Aapka Hindi Film Songs, Live On In Program. आपके एक बहुत ही बढ़िया जबरदस्त आरजे के साथ, जो मैं अभी रिव्यू नहीं करने वाली हूँ. आपको जुड़ के रहना पड़ेगा एफएम ट्रैकोपैन 103 मेगाहर्ट्ज़ पर. इफ यू वांट टू नो हु द आरजे इज, ऑलराइट, द नंबर आई डिड से इट आउट 0370-224-3036. वेल, यू कैन पिक अप योर फोन्स, गेट रेडी टू डायल द नंबर वंस द क्लॉक स्ट्राइक्स 6 p.m. Well, as for me, it's time for me to go for my coffee break. As said, I'll be back again at 7:30. This has been your RJ Kenny. As always, from me to you, this will be Tra-la-la.

0: will take a short commercial break and we will be right back with your first call.
1: 금츠노 짜기 이니로 HIV and AIDS 예자 카드니 기니네 지그진 콜로 HIV 그스미 수쇼 and 바나치피 진기요 아니
2: 아이즈 히퍼 콜로 아금라로 섹스 아키르티 아시즈 투초큐 and 그다음 시금라로 가콜로 HIV 그스미 주크나파 and 고탈리타 문교 아니
1: 닝우 곡타 렉타 가하큐 예 카시 케니노로
2: 아사이 보예 나갈린 스테이트 AIDS 컨트롤 소사이티 베조 놈라오 세르자니
3: Intolerance aro allergies laga symptoms tu vomiting diarrhea pet bika skin rashes chehra jiba aro lips phulija sas lobole duk pa khana se itu khan laga karan tu khalua kunba gaute namila karune hobo pare khalua packets te kunba ingredients gaute namila laga jankari khan likhi kina thaka tu bhal para phuri lobi itu likha khan tu iniga hobo pare may contain allergen nohile bi lactose free gluten free Kalua gauti namila khan tu nakini bi. Jun khan lactose intolerant ase, tai khan dudh aro dudh para bana saman khan nakhabo lage, aro gluten intolerant thaka khan tu ata maida khan nakhabo lage. Kalua para allergic reactions bishi hoile, doctor logote sai lobi. Itu jankari di ase, Food Safety Authority, Nagaland.
4: Provides online applications from unmarried male and female candidates for short service commission. Information technology entry. Last date for submission is 1st June 2026. For more details visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy. Combat ready, cohesive. Atmanirbhar. Safeguarding seas for a viksit Samriddh Bharat.
5: मार्केट के बारे में क्या
6: परफॉर्मेंस का बोलो
5: बी द फ्यूचर
6: मार्केट ट्रेंड टेक
5: सुनना है कि
7: आज की खबर में पहले ही बोला था ब्रो
8: माय प्रेडिक्शन इज
9: आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन
8: मेरे दोस्त ने बोला
10: देवी जी की सुनो
11: अब अच्छा लग रहा है ना लगेगा ही हमने शोर को म्यूट जो कर दिया है आपको भी अपने कीमती सपनों को सच करना है तो बेमतलब की बातों को म्यूट कर दो और म्यूचुअल फंड्स में डटे रहो म्यूचुअल फंड्स सही है
12: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें
13: WFM Tragoban
14: 103
13: MHz News, music and entertainment
14: WFM Tragoban
13: FM 103 MHz
0: Welcome back my dear friends and we have the first caller with us Hello Hello
15: Hello
0: Hello, Hello. Kunkuya san
15: Ji namaste
0: Namaste who is on the line
15: जी प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ ग्राम लछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से
0: ओके प्रेम सिंह जी प्रोग्राम में स्वागत है और बताइए आज कौन सा वाला गीत सुनना चाहूंगा
15: जी फिल्म का नाम है गंगा यमुना सरस्वती और गाने के बोले साजन मेरा उस्तार है
0: ओके और किसी को डेडिकेट करना चाहूंगा
15: जी सर हमारे दोस्त है आकाश के जितने भी दोस्त है ना
0: जी
15: उन सभी को डेडिकेट है उनमें से भगवान सिंह परमार जो हमें इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते रहते हैं
0: अच्छा आपको इसका प्रोग्राम के बारे में जानकारी देते रहता है
15: हाँ जी वो मोबाइल पे हमारा ग्रुप बना हुआ है हेलो फरमाइश रेडियो एक का ग्रुप
0: जी
15: उसके माध्यम से वो मैसेज डाल देते हैं कि अभी कोई ना कार्यक्रम लाइव इतनी बजे से इतनी बजे तक रहेगा और ये नंबर रहेंगे उनके
0: क्या बात है
15: जिससे उससे हमें ये जानकारी मिलने के बाद तुरंत हम इस कार्यक्रम से जुड़ जाते हैं
0: ठीक है और प्रेम सिंह जी आप क्या उज्जैन से है ना
15: जी हाँ महाकालेश्वर बाबा की नगरी है यहाँ पे
0: ओके ओके
15: जी यहाँ पे महाकालेश्वर बाबा के दरबार में मतलब बाहर 12 साल में सिंहस्थ का मेला भी लगाया जाता है
0: जी
15: जी अभी 2028 में भी यहाँ पे मेला लगेगा
0: ठीक है थैंक यू सो मच प्रेम सिंह जी आपसे बात हुआ बहुत अच्छा लगा और सुनिए आपका रिक्वेस्ट सॉन्ग
15: जी थैंक यू सो मच
0: यू वेलकम बाय बाय
15: ओके बाय
0: तो माय डियर फ्रेंड्स उज्जैन আমি খান লাগা প্রেম সিং আমি খান লাগা লিসনার প্রেম সিং জিবর রিকুয়েস্ট করে লাগা আমি খান সবই শুনি হব গঙ্গা যমুনা সরস্বতী ফিল্ম লতা মঙ্গেশকর অবস্থা একদম ভাল গীত একটা মিউজিক দিছে আনু মালিক লিরিক্স ইন্দেভার শুনি কিনা এনজয় করবি আর তাই নাম ল সবকে এটু গীত ডেডিকেট করে দিয়েছে

0: tang kung ta nlinah van daw kalo.
1: Nsi jam da shangjo Nagaland State AIDS Control Society yak cham de tiala.
2: Well, my dear friends, we have the next lucky caller with us. Hello.
3: Jai Mata Di.
2: Jai Mata Di. Program mein swagat hai aur bataiye.
3: Mera naam Puran Verma hai.
2: Puran Verma ji.
3: मैं डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान गांव का नाम अंशमल दुगला से बात कर रहा हूँ सर।
2: ओके पुरन वर्मा जी, प्रोग्राम में स्वागत है और बताइए आज का दिन कैसा रहा?
3: बस सर बढ़िया रहा, आज का दिन गर्मी यहाँ बहुत पड़ रही है, वहाँ बताइए आपको उधर कैसा हो रहा मौसम?
2: हाँ मौसम बहुत बढ़िया है इधर, इतना गर्मी भी नहीं है इतना ठंडी भी नहीं है।
3: मूवी का नाम है हमारा दिल आपके पास है।
2: अच्छा मूवी का नाम हमारा दिल आपके पास है
3: जी।
2: हमारा दिल मेरा पास ये वाला मूवी नहीं है और पता
3: है
2: अलग दूसरा जी।
3: मूवी का नाम है ये मूवी नहीं है तो फिर कुली नंबर वन मिलेगी?
2: हाँ हाँ कुली नंबर वन
3: देख
2: लीजिए
3: इसमें।
2: हाँ है
3: इसमें? कौन कौन से गाने सर इसमें?
2: आप कौन सा वाला कुली नंबर वन 1983 का एक है? तो इसमें है एक्सीडेंट हो गया नंबर वन, नंबर टू जवानी के रेल कहीं, नंबर थ्री लंबू जी, नंबर फोर मुपरा खो तुम सबको, नंबर फाइव मुझे बीनी का शौक नहीं, और लास्ट में है सारी दुनिया का बोझ हम उठाती है। कौन सा वाला?
3: तो दूसरा नंबर का कौन सा बोला सर आपने?
2: और कुली नंबर वन 1995 का है एक है और
3: दूसरा नंबर का कौन सा गाना बोला आपने?
2: दूसरा नंबर वाला जवानी के रेल कहीं।
3: हाँ यही चलेगा सर।
2: ओके और बताइए किस किस का नाम लेना चाहूंगा? थैंक यू।
3: और मेरा दोस्त है राकेश, भगवान सिंह परवान जी है, अभिनाथ जी है, रमेश प्रजापति जी है, गोल्डी भाई है, अमर साहू है गुना मध्य प्रदेश से, और बिमल है
2: okay.
3: और अमर बरसाकारी है, और जिसका भी नाम तुम लेने से भूल गया आकाशवाणी कोई माँ के चाहने वाले श्रोताओं के लिए, और कोई माँ के खासकर कोई माँ के श्रोताओं के लिए।
2: ओके थैंक यू सो मच फॉर दैट। और कुछ खास खबर है आपका तरफ से, मतलब आपका साइड से आज का दिन के लिए?
3: जी बस यही कहना चाहूंगा कि आकाशवाणी कोयमा के साथ जुड़े रहो और नए नए पसंद अपने बताते रहो, और आकाशवाणी कोयमा के साथ दोस्ती यही प्यार प्रेम बनाए रखे सर,
2: बढ़ाते रहो। हाँ थैंक यू थैंक यू
3: थैंक यू सर।
2: ओके तो माय डियर फ्रेंड्स अमिखन लागा रेगुलर लिसनर टाइम रिक्वेस्ट कर लगा गीत अमिखन हुनी अब गोली नंबर वन माने कोली फिल्म रा 1983 साल लगा था कि ऐसे छबी कुमार और अनंत बरवाल आवाज़ थे। म्यूजिक दिसे लगा स्पीकर प्यारी लाल, लिरिक्स अनंत पक्षी और ताई नाम लो सब के डुकी डिडिकेट कर दिए से।

0: Mettu gore ni de HIV mu AIDS Prevention mu Control Act de jenge na mu great na ti je tejo HIV mu ka mu ke ka ba ko yo ke da na kha sa
1: ke yo tejo yo ba hori to ke pul ha se ke pul se ro pe ke to da ro je ko le mori ma tro cho yi ke ti te ti ko le la tre mori me shu tre ke ta ko khai ke to la ti se
0: sna u ko te ke mo che zu pu ti ke
1: je hi ko Nagaland State AIDS Control Society che jo mu se si yo
2: Well, my dear friends, we have the next caller with us. Hello.
3: Hello.
2: Hello, who is on the line?
3: This is Shripal Goyal, Bahadurgarh, Haryana.
2: Okay, Shripal Goyal, right?
3: Yes, sir. Pehli baar call lagi aapka show mein.
2: Ji, aapse pehle par baat ho raha hai. Aur program mein swagat hai. Aur Shripal Goyal, bataiye, aaj kaun sa wala geet suna chahunga?
3: Sir, film ka naam Ram Kali.
2: Okay.
3: अगर मिल जाए तो आपके पास
2: रामकाली
3: जी
2: रामकाली मैं देखता हूँ रामकाली
3: हेलो
2: मेरा म्यूजिक बैंक में शायद नहीं है
3: जी
4: हाँ आ गया
2: और कोई दूसरा होगा
3: जी जी सर कलाकार मिल जाएगी
2: हाँ कलाकार है
3: जी
2: हाँ कौन सा वाला गीत एक एक
3: कलाकार में है ये कौन सा है
2: नीली नीली अंबर बर
3: ये एक ही गीत का
2: एक ही है
3: जी ठीक है सर पहले
2: ये
3: समझ लीजिए यही गीत
2: ओके और किसी का नाम लेना चाहूंगा किसी को डेडिकेट करना चाहूंगा
3: जी हमारे जी हमारे ग्रुप है हेलो फ्रॉम माय एक्सपर्ट ग्रुप
2: ओके
3: इसमें हमारे साथी हैं भगवान सिंह जी ने नंबर दिया आपका
2: जी
3: और मतलब बहुत अच्छे इंसान है
2: ओके
3: मतलब उनके उनके कारण ही कॉल लगी है
2: ओके क्या बात है
3: जी
2: और बस
3: हाँ जी सर अभी उनको पहली कॉल थी सिंह जी की लोकेंद्र जी हैं
2: जी
3: गौतम जी हैं योगेश जी हैं सब काफी लोग हैं इस ग्रुप में सुनकर सभी जो सब आपको जो सुन रहे हैं
2: ठीक है थैंक यू सो मच श्रीपाल गोयल जी

0: धन्यवाद
1: आपका, आपसे बात हुआ अच्छा लगा, और ऐसे ही सुनते रहना, ठीक है?
0: हाँ जी हाँ, धन्यवाद आपका।
1: ओके, यू वेलकम, बाय। तो माय डियर फ्रेंड्स, अमी खान लागा लिस्नर श्रीपाल खोयल फ्रॉम हरियाणा, तही रिक्वेस्ट को लगा गीत अमी खान नीतिया हनियाब कलाकार फिल्मरा किशोर कुमार अवस्थे म्यूजिक दिशे कल्याण जी आनंद जी लिरिक्स इंदिवर और तई टुकी डेडिकेट कर दी से तई लवा नाम सबके शुनी कि एन्जॉय करी माय डियर फ्रेंड्स।

0: Well, my dear friends, I'm Michal, the next caller. Thank you, sir. Hello.
1: Hello.
0: Hello, who is on the line?
1: Sir, namaskar.
0: Namaskar, program mein swagat hai, kaun hai?
1: Main Ramesh Prajapati, Gram Maya, Tehsil Bhanti, Jila Sihar, MP se bol raha hu, sir ji.
0: Okay, Ramesh ji, program mein swagat hai, phir. Aur bataiye, aaj kaun sa wala geet suna chahunga?
1: Sanjog hai kya?
0: Sanjog?
1: Haan.
0: मैं देखता हूँ संजोक है कौन सा वाला
1: गीत? देख मैं कहाँ छुपा हूँ माँ।
0: ठीक है, मैं आपको सुनाई देता हूँ ये टाइटल ऑफ द सॉन्ग। आंख मिछोली ऐसे मुझसे एक है, दूसरा है छम से दो गया दो आया, और नेक्स्ट है दिल क्या चाहिए, नेक्स्ट है यशोदा का नंदलाला।
1: हाँ, यशोदा का नंदलाला, ये वाला।
0: ओके ओके, और किसी को डेडिकेट करना चाहूंगा?
1: जी, मेरे मित्र है, सबसे पहले तो आपको
0: थैंक यू।
1: ओ भगवान सिंह परमार है, पूरन वर्मा जी है, गजराज मोदी जी है, केसरी सिंह राजपूत है, मांगीलाल चंदेल है, प्रेम सिंह सिसोदिया है, आशुतोष जी है, संगीता जी है, पूनम जी है, पूर्णिमा जी है, अविनाश जी है, राकेश जी है शिमला से, और गोल्डी जी है, अमन भस्माकारी है, पूनम अमर सिंह साहू है, भाई को मुंडा है, रमेश पात्र है, और धर्मवीर है दिल्ली से।
0: ओके रमेश जी, आज का दिन कैसा रहा, आज का बिजनेस कैसा रहा, आपका सिलाई का काम आज है ना?
1: जी जी, सिलाई का काम है मेरा। आप मेरे से पहचान गए?
0: हाँ, मैं याद हूँ आपको, आप पहले पर
1: जी।
0: तो आज का कितना पीसेस सिलाई किया है बताइए?
1: आज तो मतलब क्या लाइट कम था तो इसलिए दो कपड़े बनाए।
0: दो कपड़े?
1: क्या क्या लाइट कम, आज लाइट ज्यादा कटा, गर्मी ज्यादा ही पड़ रही है।
0: जी जी जी, और
1: तो 45 करीबन है इस समय, मतलब 45 डिग्री चल रही है हमारे यहाँ गर्मी।
0: क्या बात है, एकदम ख्याल रखना, और थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, और सुनो आपका रिक्वेस्ट सॉन्ग।
1: जी जी,
0: ओके भाई। तो माय डियर फ्रेंड्स, रमेश फ्रॉम एमपी, আমি খান লাগে রেগুলার লিসনার রেগুলার কলার থাকি আছে, তাই রিকুয়েস্ট করা গীত আমি খান শুনি আব সঞ্জোক ফিল্মরা লতা মঙ্গেশকর আওয়াজতে শুনি কিনা এনজয় করবি, আর তাই নাম লওয়া সবকে এটুকে ডেডিকেট করে দিয়েছে।

0: सोच के तो क्या पाएगा। कुमार
1: अच्छा
0: सानू जी, कुमार सानू, आशा भोसले और मोहम्मद अजीज।
1: अच्छा मेरा म्यूजिक बैंक में एक है खयाल का, मही महिया तेरे कसम करके एक है, बस यही
0: अच्छा
1: है।
0: अच्छा तो फिर थानेदार होगा, थानेदार,
1: धनीदर है हाँ
0: थानेदार
1: या
0: जी। तो इसमें जीत है आपका, जीना है तो हंस के जियो,
1: जीना है तो हंस की जियो। यस
0: आशा भोसले और अमित कुमार
1: जी, और बताइए किस किस को ये टिकट करना चाहूंगा।
0: जी। पहले तो अप्रिय रहेगा, उसके बाद है
1: बिल्कुल
0: जी प्रेम सिंह जी हैं, एमएस प्रजापति जी हैं, पूरन वर्मा जी हैं, राकेश जी हैं, आशुतोष जी हैं, संगीता जी हैं, और अमल रत्नाचार्य हैं, और विजय कुमार सोने वाले हैं, अमर सिंह साहू के साथ, और जितने कुमार सोने वाले हैं, सबके लिए दिल के संत रहेगा।
1: ओके अविनाश, और बताइए आज का बिजनेस कैसा रहा आपका दुकान में, मतलब आपका
0: जी,
1: वेल्डिंग
0: अरे
1: वेल्डिंग का काम कैसा
0: वाह,
1: रहा।
0: आज देखो आज सब सबको मतलब कि इतनी अच्छे से पहचान रहे हैं, मतलब कि आप कार्यक्रम में से नोटिस होकर बैठे हैं, कौन क्या कर रहे हैं।
1: अरे यार बात करते रहता है, और इसका पर में भी बात किया था
0: जी,
1: तो
0: बहुत
1: याद
0: अच्छा।
1: में
0: नहीं नहीं बिल्कुल, नहीं देखिए आरजे का तो यही तो एक मतलब खासियत होता है, कोई भी आरजे होते हैं मतलब कि 2-4 दिन बात करने के बाद उनको पूरी तरह से अंदाज हो जाता है कौन सा कॉलर है, फोन लगाए वो क्या मतलब क्या कर रहे हैं, इन
1: क्या
0: सब की
1: बात
0: बातों तो सबसे अच्छा लगता है यही कि आप देखिए कोने में इतनी मतलब की अच्छी तरह से हम सभी कॉलर को आप इसी तरह से जज करते रहते हैं, अच्छा लगता है।
1: है, बस इतना तारीफ करो बस। और पता आपका बिजनेस कैसा रहा आज।
0: जी, बिजनेस बहुत अच्छा रहा आज, क्योंकि देखिए आज गर्मी भी नहीं था, मौसम बराबर था, तो काम बहुत बढ़िया तरह चल रहा है।
1: ओ क्या बात है, बहुत अच्छा खबर है, और इस अच्छा खबर के साथ सुनो आपका जो रिक्वेस्ट की है, ठीक है।
0: जी,
1: थैंक
0: धन्यवाद
1: यू,
0: सर।
1: या हुआ बाय। तो माय डियर फ्रेंड्स, अविनाश फ्रॉम नॉर्थ ত্রিপুরা আমি খান লাগা রেগুলার লিসনার থাকি আছে, রেগুলার কলার ভি থাকি আছে, তো তাই রিকোয়েস্ট করা লাগা গীত আমি খান শুনি হব, আশা বোসলি, অমিত কুমার, রিমা লহরি আর খরস মিউজিক দিছে পাপি লহরি, লিরিক্স অঞ্জন আর তাই নাম লওয়া সবকে এটুকে ডেডিকেট করে দিয়েছে।

शाम धीरे धीरे दिल में उतर लगी है, म्यूजिक की धुन हवाओं में बिगड़ने लगी है। शाम धीरे धीरे दिल में उतरने लगी है, म्यूजिक की धुन हवाओं में बिगड़ने लगी है। दिन की थकान अब हल्का सा खो रही है, हर मेलोडी कुछ महसूस करवा रही है। कुछ यादें फिर पास आने लगी है, कुछ बातें दिल को छू जाने लगी है। मोहब्बत भी शायद ऐसी ही होती है, वक्त के साथ और गहरी होती जाती है। और दिल पूछ बैठता है, हाउ लॉन्ग विल आई लव यू।

मोहब्बत वक्त से भी गहरी लगती है, कभी खामोशी में भी जिंदा रहती है। मोहब्बत वक्त से भी गहरी लगती है, कभी खामोशी में भी जिंदा रहती है। दिन बदलते हैं, मौसम भी बदलते हैं, पर कुछ एहसास दिल में ठहर जाते हैं। हर साथ आसानी से ख़त्म नहीं होता और दिल पूछता रहता है, हाउ लॉन्ग विल आई लव यू। Well, hello, hello, and a very, very good evening, ladies and gentlemen. Finally, finally, the day is slowly settling into a calmer, a softer night. Yes, finally. And maybe you are done with your dinner, maybe you are resting in your bed already, or maybe you have started cooking your dinner now, or maybe you are simply sitting quietly with your thoughts and a cup of chai nearby. Well, whatever you are doing and whatever your evening is looking like right now, I am

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गार स्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की। पश्चिम बंगाल सरकार ने भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोग गठित किए और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनस गार स्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ये साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था लेकर हरित शिपिंग तक के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारत की क्षमता, गति और प्रतिभा का उपयोग करते हुए नॉर्वे की प्रौद्योगिकी और पूंजी के सहयोग से भारतीय कंपनियां वैश्विक समाधान विकसित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
1: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूँ तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
0: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए। विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके।
1: रिसर्च, एजुकेशन और इनोवेशन भी हमारे संबंधों के मजबूत पिलर्स बने हैं। आज हमने सस्टेनेबिलिटी, ओशन एनर्जी, जियोलॉजी और हेल्थ जैसे क्षेत्रों में रिसर्च कोऑपरेशन बढ़ाने पर सहमति बनाई। इंजीनियरिंग, एआई, साइबर और डिजिटल जैसे सेक्टर में हम अपनी यूनिवर्सिटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़कर अपने पार्टनरशिप को फ्यूचर रेडी बनाएंगे।
0: द्विपक्षीय बैठक में उच्च तकनीक, स्वास्थ्य समाधान, डिजिटल स्वास्थ्य, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्रों में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने नियम आधारित विश्व व्यवस्था में अपने साझा विश्वास और संवाद तथा कूटनीति के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया।
1: भारत और नॉर्वे दोनों रूल्स बेस्ड ऑर्डर, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता, यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया। हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते हैं। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म अनिवार्य है।
0: प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के महामहिम राजा हेराल्ड पंचम द्वारा रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, पीयूष गोयल, मनोहर लाल और किरेन रिजिजू सहित कई अन्य मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। गृहमंत्री ने कहा कि 32वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के विस्तार का प्रतीक है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि यह सम्मान मोदी के सशक्त नेतृत्व और विश्व भर में भारत के बढ़ते सम्मान को दर्शाता है। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये सम्मान वसुधैव कुटुंबकम के चिरस्थायी सिद्धांतों के माध्यम से वैश्विक सद्भाव को मजबूत करने के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि स्वीडन के उनके यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये पहल महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटरेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए
2: रूप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुँच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्ष में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि यही आत्मनिर्भर भारत की सच्ची पहचान होगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जोश है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है और निर्यात भी बढ़ रहा है।
2: भारत का बना हुआ सामान, भारत से दी हुई सेवाएं और अधिक तेजी से आगे बढ़े। हम संतुष्ट ना हो कि हम विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, कभी संतुष्ट ना हो और आगे बढ़ा छलांग लेने की सोच और क्या कर सकते हैं उसके लिए पूरे समय हमें सोचते रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा, नई चीजों को आगे लेके जाना पड़ेगा।
1: भारत में परमाणु क्षेत्र में निजी निवेश और उद्योग सहयोग के उभरते अवसरों के बारे में उच्च स्तरीय अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल ने आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल के इस दौरे में अमरीकी परमाणु उद्योग के वरिष्ठ प्रतिनिधि, व्यावसायिक हितधारक और नागरिक परमाणु ऊर्जा तथा उन्नत प्रौद्योगिकी में भारत अमरीका सहयोग से जुड़े अधिकारी शामिल थे। इस अवसर पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच आज विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और उभरते क्षेत्रों में मजबूत और भविष्योन्मुखी साझेदारी है।

0: डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के अंतर्गत भारत के दीर्घकालिक स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत का लक्ष्य 2047 तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को वर्तमान 8.8 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करना है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश में तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है।
1: कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई 70% पर अभी बनी हुई है। मार्च के महीने से लेकर अभी तक लगभग 7,37,000 पीएनजी कनेक्शंस को गैसिफाई किया गया है। 2,76,000 कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा चुका है और 7,76,000 से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने पीएनजी कनेक्शन के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया है।
0: इस बीच सरकार ने YouTube के उन वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत में केवल 9 दिन का तेल भंडार बचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने दावे को भ्रामक बताते हुए कहा कि देश में लगभग 60 दिन के कच्चे तेल का भंडार है और शोधन क्षमता भी पर्याप्त है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिस्वजीत बसु करेंगे। पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान महिलाओं पर अत्याचारों पर गठित आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चैटर्जी करेंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में सीबीआई ने 5 स्थानों पर तलाश अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

Nimadi boy aru nimadi girl bravi kana honi kana enjoy kore suna likhi diyeche thank you so much aru good night shayari ekta yate durgesh pra share kori ase aru yate nika koi ase mithi mithi yaadon ko dil mein saja lena saath guzare bal ko balkon mein basa lena dil ko phir bhi na mile sukoon to muskura ke mujhe अपने सपनों में बुला लेना गुड नाइट आपके बसंदीदा का नए लगातार एफएम ट्रैक 1103 मेगाहर्ट्ज़ पर कोई ना दुर्गेश पर लिखना बताई दिए से थैंक यू सो मच दुर्गेश फॉर दैट ब्यूटीफुल गुड नाइट शायरी श्रीकांत पटेल एंड फैमिली ताकन बिकाना होने के ना एंजॉय करो इसमें लिखी दिए से थैंक यू सो मच श्रीकांत जी और होने के ना एंजॉय करो थैंक यू तो माय डियर फ्रेंड्स टाइम भी पहुंची जाए से या तो लास्ट की दी होनी हो बो Ekta emotional track which connected deeply with audiences for its heartfelt lyrics and soulful composition. Honikina enjoy grubi chichori filmbra Arijit Singh waste. Music disappear tam lyrics Amita Bhattacharya.

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।